की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen. हाँ जी बिल्कुल, दिल को हम बदतमीज भी बोल सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा होता है, क्या ही है। बट यस, ऑन वर्ल्ड हार्ट डे दिल की बिल्कुल सुननी चाहिए, लाइक क्वाइट लिटरली। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा यहाँ पर आपके साथ। 8:00 हो चुके हैं, 6 मिनट से बहुत टाइम। डेफिनेटली चलिए वापस चलते हैं एशियन गेम्स में, जहां पर एक मुद्दा उठाया गया है। सो वेल, बैडमिंटन के उसमें देखे तो पीवी सिंधु का एशियन गेम्स का जर्नी हैज एंडेड in the quarterfinals after a tough 3-game battle against China. And actually, Sindhu jo hai, she started brilliantly. She took the first game and second game unka kafi incredibly close tha, but Chen, China se hai, took it before winning the decider. But match ke baad, Sindhu ne sirf defeat ki baat nahi ki, she raised some pretty serious questions and everybody right now on social media is talking about it. Sindhu ne kaha aur unke puri jo team unke saath gayi hai, unhone ye kaha that she had to play 3 matches in around 18 hours. Unka late match finished around 1 in the morning. She got back to the hotel 3 baje tak and was up again at 8:30 to prepare for the quarterfinal. And as every athlete will tell you, ट्रेनिंग जितनी इम्पॉर्टेंट है, माइंडसेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट बॉडी की रिकवरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। और भी इनफैक्ट इश्यू सामने लाया गया। उनका क्वार्टर फाइनल वॉज प्लेड ऑन कोर्ट 4 वेयर देयर वॉज नो वीडियो रिव्यू सिस्टम। सो हॉकआई वॉज रिपोर्टेडली अवेलेबल ओनली ऑन कोर्ट्स 1 and 2। तो सिंधु जो है उनको लगा, शी फेल्ट अ कपल ऑफ क्रूशियल लाइन कॉल्स कुड हैव बीन रिव्यूड, स्पेशली जब एक मैच इतना इम्पॉर्टेंट है तो। सो well, she spoke about the disappointment but also about her 12-year Asian Games ka journey from her first games jo ki 2014 mein to her fourth appearance now, saying essentially that one painful result cannot define kisi ka bhi pura ka pura journey. And I think that's one takeaway unki is baat se aaj ke liye. Kabhi kabhi hum ek kharab din aur ek failure and ek result ko itna bada bana dete hain ki uske piche pura safar bhool jate hain. So yeah, one result is a moment, it is not the entire story. I hope matlab जब इस तरह की बात है, उसका कोई रिजल्ट भी निकले, अदरवाइज व्हाट आई हेयर इज ओनली टॉक्स एंड टॉक्स एंड टॉक्स ऑल अराउंड। वेल, अभी कुछ दिनों से मैं तो गाने ही लग गई, मुझे अगला गाना दिखता है, मेरे दिमाग में मैं ऑलरेडी गाना शुरू कर देती हूँ। सो लेट्स हियर इट, दिल तो बच्चा है जी। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमारे योगेश जी जो है, उन्होंने मुझे गाना भेजा है प्ले करने के लिए, वो भी चलाती हूँ। गुड मॉर्निंग।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
3: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 अंतराव के साथ। 8:20 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए म्यूजिक इंडस्ट्री की थोड़ी बात की जाए, एंड दिस वन इज इंटरेस्टिंग। भाई इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, एक है अरमान और दूसरे हैं उनके अमाल मलिक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजर सिंगर अमाल मलिक। एंड फिलहाल इन्होंने, मतलब ये काफी चर्चा में रहे कुछ टाइम पहले, जब इन्होंने काफी अपना दिल लोगों के सामने रखा और कहा कि I just don't want to stay in touch with all these family members of mine and all those things. तो उस टाइम पे काफी, you know, इनका, you know, the controversy और इन सब में नाम रहा। But now he has put out this very pretty strong warning to the Indian music industry. Basically, जो music labels है, producers है, production houses है, directors है, basically everyone involved in putting music out there. और issue क्या है? Credit ka. Now, Amal Malik says that when his songs are used ya fir promoted, he and his lyric writers should receive proper primary artist ke credits, which is completely fair. He said that if this is not corrected across his songs, by the end of this year, he plans to hold a press conference and publicly name people and organizations eventually involved. Apparently, one of the things that triggered this latest outburst was Salman Khan Films, jo hai, jo production house hai, they reposted content around the 11th anniversary of Main Hu Hero Tera. Yeah, that one. So Amal Malik jo hai objected that neither he ya fir unke jo lyricist hai Kumar had been properly credited for this gana. And you know, isme interesting conversation definitely hai. Hum ek gana sunte hai and usually remember the face and film and maybe the singer, but ek gaane ke piche kitne sare log hote hain, composer hota hai jo likhta hai, lyricist hota hai, musicians hote hain, arrangers, the producers, and kabhi kabhi jis insaan ne wo tune create ki hoti hai uska naam audience ko pata bhi nahi hota hai. So well, aapko kya lagta hai, creative work mein credit कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक बहुत ज्यादा। क्या नाम मेंशन कर देना बेसिक रिस्पेक्ट है? यस। या वंस वर्क इज आउट देयर दैट सिंपली पार्ट ऑफ द बिजनेस, ये ऐसा लोग मान के यू नो चलते हुए आ रहे हैं। नोबडी आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट दिस, थिंक अबाउट दैट व्हाइल वी मूव ऑन विद सम म्यूजिक ओवर हियर। लेकिन कहीं जाना मत, बिकॉज थोड़ी देर में हम थोड़ा सा लेवल अप फन करने वाले हैं। भाई सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि, नाम तो सभी ने ही सुना होगा। टिकट्स जीतने हैं? जवाब भी हाँ ही में आ रहा होगा। Then stay tuned to मस्ती का मंत्र विद अंतरा। कुछ फन करते हैं, क्या कहते हो?

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: मुझसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्राइडे टाइप गाने ट्यूसडे मॉर्निंग को तुम चला रही हो अंजरा. मैंने कहा कि जब तक फ्राइडे आ नहीं जाता तब तक गाने चलाकर ही काम चलाना पड़ेगा. क्या करें. रेडियो मस्ती 24/7 अंजरा आपके साथ यहाँ पर 8:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. गुड मॉर्निंग. यस, चलो भाई, थोड़ी देर पहले मैंने टीजर तो डाल दिया था कि चलो कुछ खेलते हैं, कुछ फन करते हैं, गरबा खेलते हैं. क्या कहते हो, 16, 17 and 18 को गरबा खेलेंगे मेरे साथ? डांडिया रास होगा, क्या ही मजा आएगा. आई ऑलवेज लव दिस टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि इतनी सारी चीजें बैक टू बैक होती रहती है कि एक के बाद एक फेस्टिवल्स आते रहते हैं, एकदम रौनक बनी रहती है. वेल, लेट्स टॉक अबाउट प्लेइंग डांडिया, क्योंकि सिंगापुर गुजराती सोसाइटी जो है वो बिल्कुल लेकर आ रहे हैं सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि. वी ऑल नो अबाउट इट, हर साल ये लेकर आते हैं. ये जो है 3 nights ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशन है, म्यूजिक है, गरबा डांडिया, एंड देन अमेजिंग फेस्टिव फीलिंग जहां पे पूरा हॉल एक साथ सेलिब्रेट करता है. और इस बार तो जो है इनका जो नया वेन्यू है, और दैट इज एब्सोल्युटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस स्टनिंग वेन्यू, लगुना बॉलरूम, दूसरी थानी लगुना की बात कर रही हूँ, 11 लगुना गोल्फ ग्रीन में है ये. सो वेल, 3 दिन है, 16, 17, 18, भाई टिकटे बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगी, बहुत ही फर्राटे से निकलती हुई जा रही है. सो वेल, अब जो है आप बिल्कुल आप जा सकते हो, अपनी टिकट्स बुक करा सकते हो. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है. लेकिन देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट. अगर तो आपको टिकट्स बुक करानी है, यू कैन गो

0: या गॉडेस. ओके, गरबा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म टू ऑनर एंड वर्शिप विच डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और गॉडेस. आपके ऑप्शन है ए माँ दुर्गा या फिर बी माँ सरस्वती. है ना, मैंने कहा था बहुत मुश्किल सवाल है, तो इस मुश्किल सवाल का फटाफट से दे दो बिल्कुल जवाब. हाँ हाँ, चैट जीपीटी गूगल जो करना है कर लो, बिल्कुल जरूरत पड़ी सकती है. इट्स टू डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू. सो सेंड अस योर आंसर एंड हु नोज दैट यू वुड बी सेलिब्रेटिंग नवरात्रि एंड दिस फेस्टिव सीजन विद सिंगापुर गुजराती सोसाइटी एंड मस्ती मीडिया नेटवर्क साथ साथ में. ओ हो क्या ही बात ही एकदम क्लासिक. वेल, इस मूड को और भी बनाते हुए कमिंग अप इज दिस नेक्स्ट गाना. या थामा थामा, गाना सुन के जाना.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: You know, कुछ एक्टर्स होते हैं जो काम कम करके जाते हैं लेकिन अपना एक जो है ना छाप छोड़कर जाते हैं. Now he is one of those, जब ये इन्होंने काम करना बंद किया, I went like कि why? He was good. Where did he go? Why is he not working anymore? Why is he not coming on screen anymore? Radio Masti 24/7 Antra ke saath yahan par chal raha hai Masti ka mantra. 8:48 ho chuke hain studio clock mein. Bhai, ye chocolate boy wapas aa raha hai. Yes. Bhai, कभी कभी आदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है तो हमें ये जो है इमरान खान काफी अपने से लगे. आई हैव अ वेरी वेरी awkward memory with this name actually. You know, in my very very बिल्कुल शुरुआत में मेरे करियर के तब मैं शायद इंटर्न थी किसी रेडियो स्टेशन में. आई विल नॉट टेक रेडियो स्टेशन का नाम, लेकिन हमको भेजा गया था इमरान हाशमी का जो है कोई एक मूवी के प्रमोशंस के लिए. तो हम ऑन ग्राउंड गए थे तो इन लोगों की शूटिंग कहीं पे चल रही थी तो हम वहाँ पे पहुंचे एंड आई वॉज सो नर्वस. आई कॉल्ड इमरान हाशमी इमरान खान. या आई डिड दैट. One of those things. Yeah, हर किसी की जिंदगी में ये नर्वस मोमेंट्स आते हैं दोस्तों. मैं वही बता रही हूँ, ये उस टाइम की बात है. वेल, कमिंग बैक टू इमरान खान द ओरिजिनल वन. जाने तो ये जाने ना, आई हेट लव स्टोरीज ब्रेक के बाद डेली बेली एक में और एक डू. ओ माई गॉड. फिर मैंने सोचा कि कहाँ गया ये लड़का. अच्छा, अच्छी एक्टिंग करता है एंड ही हैज दिस एक प्रेजेंस है इस बंदे की ऑन स्क्रीन. बट वेल, गुड न्यूज इज इमरान खान इज ऑफिशियली कमिंग बैक. भाई, कटी बट्टी इनकी लास्ट थी आई थिंक 2015 में एंड मोर देन अ डेकेड अवे फ्रॉम ऑल दीज लीडिंग रोल्स. इमरान खान जो है उन्होंने कंफर्म किया हिज रिटर्न विद अधूरे हम अधूरे तुम, एक रोमांटिक कॉमेडी जो कि ओटीटी पर रिलीज होगी. शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिल्म करंटली पोस्ट प्रोडक्शन पे है एंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा हाउ इमरान डिस्क्राइब्स इट दैट दिस इज नॉट हिम ट्राइंग टू कम बैक एंड बिकम द सेम 20 समथिंग चॉकलेट बॉय अगेन. ही कॉल्स इट दिस ग्रोन अप रोमांटिक कॉमेडी. थैंक गॉड, something more appropriate to where he is in life today. The film stars Bhumi Pednekar and Gurfateh Pirzada and Danish Aslam jo hai isko direct karne wale hain. Well, Danish Aslam is also the person who directed Break Ke Baad, by the way, with Imran and Deepika Padukone back in 2010. So adhure hum adhure tum mein soch rahi thi ki kuch to familiar sa lag raha hai. It actually comes from the song Adhure from the movie Break Ke Baad, Imran Khan ki jo movie hai. So somewhere it feels like rom-com world has grown up along with the people who have actually watched it. So Imran himself has said that after 10 years, this was the film he simply had to kind of be in. He says the movie reflects the life experience that both he and Danish have accumulated in 15 saalon mein. That's an interesting comeback. All I want to do is watch him on screen again. Give me a good rom-com. I am all for it. I'm really looking forward to it. Seriously, wala. Filhal to रोम कॉम इस मूवी को बुला सकते हैं. इस मूवी को आप कुछ भी बुला सकते हो. इट इज वन हेल ऑफ एन एपिक मूवी. इट्स कॉल्ड दिल धड़कने दो एंड यस वेयर द गर्ल्स लाइक टू स्विंग. गुड मॉर्निंग.

0: में बजी गिटार।
1: क्या धड़कन की जगह गिटार? जरा सोच के देखो। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan. तो आज कल 9 बजे के उस पार गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा यहाँ पर आपके साथ। यहाँ पर बज चुके हैं 9:06। भाई मस्ती का मंत्रा चल रहा है 7 से धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं 10 बजे तक, यानी कि आखिरी एक घंटा भी है। भाई सिंगापुर के वेदर और सिंगापुर के हेज के बारे में बात कर लिया, लेट्स गो टू बैंकॉक। आई थिंक परफेक्ट प्लेस टू गो राइट, जब भी बैंकॉक की बात करें। हाँ हाँ चलो चलो, कब प्लान बनाना है, अभी चलते हैं, अभी नहीं जाना है क्योंकि वहां हो रही है बारिश, लाइक धुआंधार बारिश हो रखी है वहां पे। सो पार्ट्स ऑफ थाई कैपिटल रिसीव्ड अराउंड 300 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इन जस्ट 48 आवर्स। मेजर जितने भी रोड्स हैं डिसअपीयर्ड अंडर वाटर्स, कार्स वर पार्टली सबमर्ज्ड, सम रेसिडेंट्स जो है वो एकदम कहते हैं ना नी टू वेस्ट डीप वाटर में चलते हुए नजर आ रहे हैं। देर आर वेरियस क्लिप्स विच आर फ्लोटिंग अराउंड इन सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अथॉरिटीज जो है उन्होंने डिक्लेयर किए All 50 districts of Bangkok disaster affected. Now across Thailand, the situation is genuinely serious. Flooding has affected thousands and hundreds of homes as of today, and at least 8 deaths, jo hai, had been reported nationwide. Ab in sabhi ke beech mein, Bangkok mein, kahan kya nikla? इन्फ्लुएंसर आजकल निकल रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स जगह जगह से। अब उन्होंने उसमें भी सोच लिया कि आप वायरल कैसे हुआ जाए, क्या कर दे कि लोगों को लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। तो उन्होंने कहा रोड नहीं है कोई बात नहीं, जेट स्की निकालते हैं। सो देयर इज दिस वायरल वीडियो जहां पे दिस जेंटलमैन इज राइडिंग जेट स्की डाउन द फ्लडेड रोड, ठीक है, एक्सीलरेटिंग एंड वो शार्प टर्न्स ले रहा है, क्रिएटिंग दीज ह्यूज वेव्स। अपेरेंटली इट वॉज नॉट लोगों को रेस्क्यू करो मिशन, इट वॉज कॉन्टेंट बना रहा हूं मिशन। सो रेसिडेंट्स जो उस एरिया में है उन्होंने कंप्लेन किया दैट द वेव्स आर हिटिंग द रोड साइड होम्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंड रिपोर्ट्स सेड दैट फेंस वगैरह भी काफी डैमेज हुए हैं। सो वेल ये तो बैंकॉक ड्रिफ्ट करने निकले थे, पुलिस इवेंचुअली इनको ड्रिफ्ट करते हुए ट्रैक डाउन किया, एंड ही वाज चार्ज्ड विद कॉजिंग अ पब्लिक न्यूसेंस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक विदाउट ऑथराइजेशन। उनकी जेट स्की जो है वो सीज कर ली गई, एंड इवन द फ्रेंड हु वाज फिल्मिंग हिम वाज चार्ज्ड विद असिस्टिंग इन द ऑफेंस। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक, वैसे ट्रैफिक तो था नहीं, रोड पे कार चलने की जगह होती तो जेट स्की क्यों ही चल रही होती। I see, technically road तो नहीं है, but jokes apart, when homes are flooded and people are struggling over there, creating those extra waves just for a viral video is probably not the smartest idea anybody. भाई influencers से तो दरखास्त अक्सर करनी पड़ जाती है आजकल की, थोड़ा सा सोच लो क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या कौन, थोड़ा सा कब होगा, नहीं होगा ना। चलो भाई अंधाधुन गाना, मूवी का नाम गाना इस नैना तक क्या गुसूर देख लिया इन लोगों को। अमित त्रिवेदी की आवाज कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
0: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
3: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आपके साथ मस्ती का मंत्र चल रहा है। और इससे पहले कि हम वापस अपने खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े, 9 बजकर हो चुके हैं 18 मिनट। जस्ट वन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मैसेज बिफोर वी एक्चुअली मूव अहेड। नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जो है, जब कहीं पर भी ये स्ट्राइक होता है, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू हेल्प बट आई डोंट नो हाउ। It's very common, right? And right now, there is a very simple way to stand in with the communities affected by the floods in Nepal. So, Nepal Flood Relief Fund, kujo hai, we invite kar rahe members of public in Singapore to come forward and contribute. Hum log roz aapko yaad dilana yahan pe chah rahe hain, because honestly, no contribution is too small jab log ek saath aaye for a cause. A dedicated donation booth jo hai, wo abhi currently open hai at the entrance of Little India Arcade, 48 Serangoon Road. 10 बजे से भी ये खुल जाएगा, रात के 8 बजे तक ये खुला रहेगा एंड 3 अक्टूबर तक ये बूथ वहीं पे आपको नजर आएगा। नाउ द इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदू वॉलंटियर्स नेटवर्क विद कम्युनिटी पार्टनर्स इंक्लूडिंग सिंगापुर इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लीश एंड अदर्स एंड सिंगापुर रेड क्रॉस नेम्ड एज द बेनिफिशियरी एंड अस ऑल्सो स्टैंडिंग इन विद देम एज मस्ती मीडिया नेटवर्क। तो अगर आप लिटिल इंडिया के आसपास है, उस तरफ जाने का आज प्लान है, जस्ट टेक आउट अ फ्यू मिनट्स अदरवाइज एज वेल एंड स्टॉप buy and contribute whatever feels right to you. अब आप वो सवाल नहीं कर सकते हैं कि how, because I'm telling you how. Sometimes we wonder, मेरे छोटे से contribution से क्या ही हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है. But relief efforts actually ऐसे ही बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे acts coming together to create something much much bigger. So well, Nepal Flood Relief Fund 3rd October तक ये booth है, 10 बजे से सुबह रात के 8 बजे तक at the entrance of Little India Arcade, 48 Serangoon Road. इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, you can give them a call as well, 9166-4101. याद रखेंगे ना, जरूर do whatever little bit you can do.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वक्त हो चला है कि इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट लिया जाए। 9:24 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वक्त व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट ECP सिटी एग्जिट। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE। अगर आप जा रहे टुवर्ड्स चांगी आफ्टर बुकेतमा रोड, अवॉइड करें लेन्स 1 और 2। हेवी ट्रैफिक की खबर है ऑन बेफ्रंट एवेन्यू टुवर्ड्स शर्स लिंक आफ्टर सेंट्रल बोलेबोर्ड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज बागी 2 के साउंड ट्रैक से श्रेया घोषाल की मीठी मीठी आवाज सिंगिंग, रिक्रिएटेड वर्जन। बट श्रेया घोषाल जो भी गाती है काफी ही अच्छा लगता है।

0: नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: मैं गाना सुन रही थी और दस दस दस दस दस पे आकर जो है मेरी बातें जो है ध्यान में अटक रही थी। भाई एज अ 24/7 स्टेशन, कैन यू बिलीव इट, हमें 10 साल पूरे होने वाले हैं एंड दिस इज जस्ट एज अ 24/7 स्टेशन। 17 साल होने वाले हैं हमें एज मस्ती मीडिया नेटवर्क, अभी तो ये बोल सकते हैं। What a journey it's been. वो suddenly होता है ना, कभी कभी आप कोई गाना सुन रहे होते हो and all of these feelings, it strikes you all of a sudden. Radio Masti 24/7 on Trap ke saath and yahan par chal raha hai. Of course, the Masti ka mantra. And I still remember mera very, very first show. And I still remember mere first show ka first gana wo kya tha. I still remember because it was still a 3-hour station jab maine join kiya tha. And from there to hell, oof, क्या क्या क्या कुछ नहीं देखा, क्या क्या कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया। वी हैव ओनली ग्रोन, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं यू ऑलवेज लर्न, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाते हैं यू ग्रो बिगर, यू लर्न एंड एवरीथिंग। मैं बात कुछ और करने वाली थी, आई हैड गॉट दिस विवेक ओबेरॉय एंड ऑल ऑफ दिस लिंक, बट देन सडनली ये गाना सुनते हुए आई जस्ट रियलाइज। सो वेल यस, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर इट्स गोइंग टू बी आवर एनिवर्सरी बर्थडे, जो कुछ भी बुला लीजिए। एंड यप, it's just quite unbelievable, jitna aapke liye utna hamare liye bhi, because hamara rishta bhi to, because ye nahi to hum kahan hi the, so hamara ye jo khoobsurat rishta bhi bana hai aapke mere beech ka ya dusre jocks ke saage, just because of Masti Media Network and the existence of this platform that we have always stayed connected. So very thankful, grateful, gratitude, sab kuch hai, masti ka level bhi sab kuch hai, everything is there. So if you want to send us wishes, feel free to do that, hai na? Dil khol ke, hum jaisa dil khol ke aap se baat karte hain, aap bhi humse dil khol ke baat karte ho, but yeah, acha lagta hai jab aap kisi ko happy birthday to you with acha sa message soch samajh ke ekdam likh kar bhejte ho, ya fir audio jo hai wo likh kar bhejte ho. Maine kaha yaad dila do, mere ko to koi sharam nahi aati, main to apne birthday wale din bhi logo ko phone karke yaad dilati hu ki tune mujhe phone nahi kiya. मेरा बर्थडे मुझे विश करो, सो आई कैन डू दिस फॉर हमारा अपना वेरी ओन मस्त मीडिया नेटवर्क एज वेल। सो यस, फील फ्री 9151893 पर इंतजार रहेगा मुझे, है ना। काफी सारे लोगों ने वीडियो जो है वो भेजा हुआ है, एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर कनेक्टिंग विद अस फॉर दिस एज वेल, हु रिमेम्बर्ड दिस डे, भाई थैंक यू, आपको भी तो बनता है। ये थैंक यू का सिलसिला भी थोड़ा टाइम पैसे चलता रहेगा, इट्स जस्ट दैट माई द फीलिंग केम ऑल ऑफ अ सडन, आई थॉट आई हैव टू एक्नॉलेज दिस फीलिंग विच हैज कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यही बात तो हम करते रहते हैं हमारे शाम के शो में जो 5 बजे आने वाला है, डियर मस्ती दिल से, कि जब जो फील करो ना उसको एक्सप्रेस कर दिया करो। देखा, बात भी हो गई एनिवर्सरी वाली और शाम का शो भी प्रमोट कर दिया, तो शाम को ट्यून इन कर लेना टाइम से। फिलहाल के लिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आगे आपको याद है, आपने व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू गॉट कनेक्टेड विद अस, याद है आपको, बताना जरा, हम भी तो जाने। 9151893
2: ओ जी।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free. Free. Free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है, टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: 9:43 हो चुके स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 आंध्र आपके साथ एंड यहाँ पर गुड मॉर्निंग करते करते करते करते समय कैसे बीतता हुआ चला गया. आई स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस थोड़ी देर पहले एनिवर्सरी की बात हो रही थी एंड यहाँ पे सलमान ने मेरे को भेज दिया है कि ये स्क्रीन शॉट के साथ कि ये वो वक्त था जब पहली बार तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे बात हुई थी. प्रीति थैंक यू सो मच फॉर दोज अमेजिंग अमेजिंग वर्ड्स विच यू हैव रिटन टू हर. सो बहुत ही अच्छा लगता अगर ये तुम वीडियो बनाकर हमें जरा भेज देती हमें भी और ज्यादा थोड़ा सा स्पेशल फील हो जाता. बट वेल थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग अमेजिंग विशेस. भाई अमेजिंग के साथ याद आया कि हाल ही में मैंने किसी को देखा रैंप वॉक करते हुए देखा. ऐश्वर्या राय ओके शी इज सच अ डीवा मैन. जब वो रैंप वॉक करती है वो अलग ही अवतार में नजर आती है. सो वेल हमारी ऐश्वर्या राय जो है ऑल आईज वर ऑन हर शी टुक ओवर द रनवे इन वेरी मच स्टाइल. उन्होंने अटेंड किया एक इवेंट इन परी और ये बिल्कुल कल की ही बात है. एंड शी टर्न्ड हेड्स एज शी वॉक्ड द रैंप विद हर रॉयल अवतार. ठीक है पीछे आईफिल टावर उसके आगे वो रैंप एंड रैंप पे बिल्कुल वॉक करती हुई इनकी लॉन्ग टाइम एम्बेसडर ऑफ दिस ब्यूटी लाइन. एंड शी मेड दिस ग्लैमरस अपीयरेंस इन दिस ड्रामेटिक वेलवेट एंसेंबल. भाई कुछ भी कहीं से भी कैसे मैंने तो मुझे जहां जिसकी तारीफ करनी होती है आई रियली वांट टू डू इट. आई डोंट रियली यू नो थिंक कि और किसी का कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं अभी तो वैसा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं. अगर कोई खूबसूरत लग रहा है तो लग रहा है यार. एंड आई थिंक शी शुड कम बैक टू द मूवीज बट आई डोंट थिंक सो शी इज प्लानिंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट. वेल कोई बात नहीं हम जो है बस उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि उम्मीद पे तो हमारी सब कुछ दुनिया ही कायम है राइट. हम ट्यूसडे को यही उम्मीद करते रहते हैं कि काश आज फ्राइडे होता बट हो तो नहीं जाता. काश हो जाता लेकिन. वेल इसी बात के साथ बढ़ते हैं आगे अपने अगले गाने की और बस कुछ देर और ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
2: इसके बारे में सुनते ही शॉपिंग की लिस्ट दिमाग में बनना एकदम शुरू हो चुका है रेडियो मस्ती 24/7, क्योंकि भाई एक ही जगह पर जब प्रैक्टिकल यू आर काइंड ऑफ गेटिंग लाइक ऑल द शॉपिंग स्ट्रीट्स, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, कश्मीर, पंजाब एंड सो मेनी थिंग्स, भाई ग्रैंड 43rd एडिशन ऑफ Zaxxalam इंडिया द फैमिली एक्सपो इट्स गोना बी बैक 16th ऑफ अक्टूबर से लेकर 25th ऑफ अक्टूबर तक, हॉल 9, Foyer 3, सिंगापुर एक्सपो में। एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इनका 20th एनिवर्सरी विद 10 फुल डेज ऑफ दीपावली शॉपिंग एंड डिस्काउंट। इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल एंड इनसेन एट द सेम टाइम। भाई क्लोथ हो गए, ज्वेलरी हो गए, एक्सेसरीज, होम डेकोर, दीपावली के गुडीज, सो मच मोर। ठीक है, इसी के अलावा देर आर वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशंस विच आर गोइंग टू हैपन, चाहे वो रंगोली हो, कैरम हो, कुकिंग हो, एंड देन उनके कम्युनिटी अवार्ड्स एंड दीपावली डिनर एज वेल। गिव अवेज की बात करूं तो भाई मोबाइल फोन से लेकर क्रूज डिनर वाउचर से लेकर फ्री एयर टिकट्स जीतने के मौके, डेस्टिनेशंस भी लाइक लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, दुबई, ओ माय गॉड, आई थिंक बहुत ही एकदम परफेक्ट प्लान है। आप भी बना लीजिए, बिकॉज ऑल 10 डेज है तो प्लान तो आप कभी भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात है एंट्री फ्री है एकदम, तो सिंगापुर दीपावली शॉपिंग का मूड एकदम ऑन हो चुका है। मेरी बात सुनकर मेरा तो हो ही चुका है लिस्ट बनते बनते, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट वक्त भी हो चुका है जहां पर मैं आपसे बोलू कि थैंक यू सो मच कि आज सुबह से लेकर इस वक्त तक आपने मेरा साथ दिया। बस अब जो है म्यूजिक कैफे आएगा, म्यूजिक कैफे की बात करूँगा आएगी, और फिर शाम को हम हाजिर हो जाएंगे डियर मस्ती दिल से के एक नए एपिसोड के साथ, आपके साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, अच्छे से बिताओ, स्माइल करके बिताओ, और कोई तुम्हें परेशान करे तो उसको भी स्माइल करके दिखाओ कि भाई इतना सीरियस क्यों हो, कर लो स्माइल, इट्स ओके। कौन सी मूवी में था, 1 2 3 या सो स्माइल, I love that on you. Bye. Have a good day.

0: मोर्चे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: ओए दिल की बुराई मत करो, नाराज हो गया ना तो बेटे लग जाएगी।
0: हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है। टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, फिर थोड़ा और सही आ जाता है। पूछो कैसे? क्योंकि गणेश चतुर्थी आ गई। अब और सही होते होते नवरात्रि आ जाएगी, डांडिया आ जाएगा, फिर और सही करते करते दशहरा दिवाली आ जाएगी, फिर और सही करते करते न्यू ईयर आ जाएगा। ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाएगा। दैट्स द होल पॉइंट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ वंस अगेन मुलाकात करने के लिए जुड़ गई है। और मुझे लगता है कि ये जो ना फेस्टिव डेज है ना, बहुत थॉटफुली प्लान किए गए हैं। मतलब पूरा अच्छा वक्त, बुरा वक्त, जैसा भी वक्त है ना, धीरे धीरे से निकलता जाता है और हम इंजॉय करते जाते हैं। हाँ जी, तो सिंगापुर में फेस्टिव डेज की जिम्मेदारी तो हम भी ले चुके हैं। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सब एंटरटेनमेंट आपका इंतजार करता ही करता है। तो बने रहिए मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ। क्या पता बातों बातों में बॉलीवुड के इनसाइट्स देते देते मैं कुछ काम की बात भी कर जाऊं कि आप कहां जा सकते हैं। हाँ, सो डोंट फॉरगेट। आने वाले गाने एंजॉय करो और मैं आती हूँ गानों के उस पार।

कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर। भाई इज्जत देना जो है ना वो कोई उनसे सीखे जो बड़ों के सामने गर्दन झुका कर बात करते हैं, बड़ों की गलती होने पर भी उन्हें टोकते नहीं है। अंजी और भी अलग अलग अंदाज होते हैं लोगों को बड़े बुजुर्गों को इज्जत देने, लेकिन अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे को इज्जत देने का तरीका अलग है। मतलब आपकी कोई मूवी रिलीज होने वाली है लेकिन आपके जो सीनियर है उनकी रिलीजिंग डेट भी वही है या आसपास है, तो आपने मूवी जो है ना पोस्टपोन कर दी, राइट? तो इससे बड़ी इज्जत तो कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी कि साउथ के स्टार जिन्होंने बॉलीवुड में रांझणा मूवी से एंट्री करी थी, आंटी मैं धनुष की बात कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, रजनीकांत जी के एक्स दामाद, राइट? कुछ साल पहले इनकी बेटी से इनका डिवोर्स भी हो गया था, लेकिन धनुष जो है वो रजनीकांत जी को सीनियर मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि रजनीकांत जी की जेलर 2 मूवी जो है ना वो इसी अक्टूबर में रिलीज होने वाली है, और उसी वक्त में धनुष की मूवी भी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम है ओम चैप्टर 1। तो उन्होंने इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर करके काफी आगे का प्लान करने वाले हैं ये। तो चलो भाई, इनको तो इज्जत देने का तरीका आता है, आपका इज्जत नोटिस करने का या इज्जत देने का तरीका क्या है आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 9151896 पर। मैं आज मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? दुनिया के बहुत सारे मौकों में से ये मौका हाथ से हम कभी नहीं निकलने देते, और वो मौका है हर किसी की हेल्प करने का। Definitely it's a high time. Radio Masti 24/7 Live पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। And अगर हम एक natural disaster की बात करें तो नेपाल ने बहुत कुछ फेस किया है, और ऐसे में हम नेपाल का साथ ना दें, हाँ ऐसा हो नहीं सकता सिंगापुर। That's why सिंगापुर में आ चुका है नेपाल फ्लड रिलीफ फंड, एंड जिसमें हम इक्वली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, छोटे से बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और एक सपोर्ट दे रहे हैं जो कि नेपाल फ्लड से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा हैम्पर हो गए हैं। सो टिल 3rd October आप 10 AM to 8 PM के बीच पहुंचिए एंट्रेंस ऑफ लिटिल इंडिया आर्केड, 48 सरानगंज रोड सिंगापुर। एंड डिटेल्स के लिए और अपनी मदद करने के लिए कॉल भी सकते हैं आप 9166410 पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
3: अगले हफ्ते कुछ तो होने वाला है। सिंगापुर में बारिश, अरे वो तो कभी भी हो जाती है यार, कोई भरोसा ही नहीं है उसका। या सिंगापुर के सभी ब्रांडेड शोरूम पर सेल, उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त है। ओके ठीक है। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ। कई बार ऐसा लगता है कि सिंगापुर में कुछ नया होने वाला है ना, तो ऐसा लगता है कि चांगी एयरपोर्ट की किसी वॉल को तो थोड़ा अलग तरह से डिजाइन नहीं किया जा रहा है वायरल होने के लिए। मतलब मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, पर मैं आपको बता दूं बॉलीवुड में ये ख्याल बदलते जा रहे हैं। हां जी, दृश्यम मूवी 2nd October को रिलीज होने वाली है एंड जो 2nd October से उस मूवी के थॉट है, क्लाइमेक्स है, जिसने मूवी देखी है वही जानता है यार, डेफिनेटली। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस मूवी में जो अपने पुलिस का किरदार निभा रहे थे अक्षय खन्ना, उन्होंने पता है शूटिंग के दौरान एंड मोमेंट में इस मूवी को छोड़ दिया। उसके रियल रीजंस तो सामने निकल कर नहीं आए हैं, जिसका दुख अभी तक दृश्यम मूवी के डायरेक्टर को है। हां जी, इनके डायरेक्टर ने यानी अभिषेक पाठक ने खुलकर बोला है कि अक्षय खन्ना ने जिस तरह से जिस मोमेंट में सब कुछ फाइनल होने के बाद इस मूवी को ड्रॉप आउट कर दिया ना, इसके खिलाफ कोई रूल होना चाहिए कि आप एक कमिटमेंट देने के बाद पीछे ना हट पाए। तो डेफिनेटली बहुत जल्द ये डायरेक्टर्स जो है ना, इस डिमांड के साथ भी फ्री होकर संतुष्टि से उतरने ही वाले हैं। मैं आज पर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि धोखा तो अब हर फील्ड में है यार, प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं है। इन एक्टर्स से कुछ सीखिए आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable Nuts only on GTMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GTMart, your personal grocer.
3: Raaz ki baat bataun, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

हेलो, गाने मत गाओ, धड़कन मदहोश है ना, तो चेकअप के लिए जाओ। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

क्या आप भी वो शख्स है जब भी कोई काम बताने लगता है या मदद की बारी आती है तो आप कह देते हैं मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी, और फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि हाय हाय मैंने क्यों किसी और के काम का बयाना ले लिया, इसके बिना भी लाइफ अच्छी चल रही थी। हाँ तो भाई ये आदत अच्छी है लेकिन समटाइम्स ये आदत ना बहुत महंगी पड़ जाती है। हाँ जी, ये जो मैं हूं ना वाला कमेंट है।

डायलॉग है इसको भूल जाओ, लेकिन हाँ मूवी तो आपको याद होगी राइट। 2004 में ये मूवी आई थी जिसमें आपने शाहरुख खान को, सुष्मिता सेन को, किसको किसको नहीं देखा यार, अमृता राव जो है वो भी इस मूवी से बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी राइट। सो पॉइंट इज कि जो डायरेक्टर है फरहा खान, इस मूवी के बारे में अचानक से जिक्र कैसे करने लगे, वही सुनने में आ रहा है इस मूवी का जो सीक्वल है ना वो कहीं ना कहीं प्लान किया जा रहा है। एंड आपको पता है कोई और कहानी अच्छी हो या ना हो, लेकिन जैसे ही फराह खान शाहरुख खान के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करती है ना तो हर तरफ दीवानगी दीवानगी दीवानगी है, ऐसे वाले ख्याल आते हैं। बट लेट्स सी होता है या नहीं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बहुत सारी बातें जरूर हो रही हैं, सो डोंट गो एनीवेयर। मस्ती मॉर्निंग शो।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
4: टाइम टू रेज द बार। रम्मा
5: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
0: बिना टिकट के आप पहुंचने वाले हैं कहाँ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब और ना जाने कहाँ कहाँ इंडिया के कोनों में। एंड आप ना सोचेंगे कि वाव, नुपुर ने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ और इस बार 10 दिनों के साथ ये सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है। कौन सा? जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो इज बैक। 20th एनिवर्सरी है यार, और 10 दिनों की ये एग्जिबिशन है। कब से? 16th अक्टूबर से 25th अक्टूबर के बीच, हॉल 9, फॉयर 3, सिंगापुर एक्सपो। राइट, 10 दिन की ये जो दीपावली बिगेस्ट डिस्काउंट सेल है, इसमें आप घर बैठे बैठे इन सारे शहरों का जो वैरायटी है वो सिंगापुर में पाने वाले हैं। और डेली आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन, कैरम कॉम्पिटिशन, चेस कॉम्पिटिशन, डांडिया, जैक कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, इवन दीपावली डिनर, या आप कह सकते हैं और भी बहुत सारे कुकिंग कंपटीशन। और अगर आप लकी रहे तो आपको दुबई, लंदन, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क का ट्रिप भी मिल सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस 16th अक्टूबर टू 25th अक्टूबर के बीच जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो में। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? घर परिवार में रोज अलग अलग तरह के कुजीन बनते हैं, ठीक है। मतलब हर तरह के कुजीन जो आपको पसंद है, या जब इंडियन कुजीन अगर आपके घर में रेगुलरली बन रहा है तो उसमें दाल, चावल, चार तरह की सब्जियां बन रही हैं, लेकिन जिस दिन पनीर की सब्जी बनती है ना, हाँ जी, तो ये लगाव एक अलग हो जाता है। वो ना नॉस्टैल्जिक हिट कर देता है कि भाई कुछ तो अलग है, कुछ तो बड़ी बात है यार। एक जमाने में ये चीज़ ना कम खाने को मिलती थी, लेकिन आज ना इसको नेचुरली बहुत कॉमन बना दिया गया, बट स्टिल इसके अंदर कुछ तो बात है यार, कुछ तो बात है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि दिस टाइम जो ये जो नॉस्टैल्जिक हिट करने का एरा है ना, ये जिम्मेदारी जो है ना, वो सलमान खान ने उठा ली है। हाँ जी, इनकी अगली मूवी मॉन्स्टर, जिसमें एक अलग लेवल का ये ना दीवानगी दिखाने वाले हैं एक्शन को लेकर, एक्शन के सीक्वेंसेस, डायरेक्टर्स और उसका जो तरीका है ना, उसका बेंचमार्क एक अलग सेट करने वाले हैं। तो सलमान खान की मूवी थिएटर्स में जब रिलीज होगी होगी, लेकिन ये जो मूवी है जिसका नाम है मॉन्स्टर, इसके सैटेलाइट राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को पहले ही 100 करोड़ वर्थ के बेच दिए गए हैं। तो गांव जब बसेगा तब बसेगा, लेकिन पहले ही मुनाफा जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया गया है। वही सलमान खान को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर आपके साथ, तो उनको एनीवेयर मेरी जान, बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक करके बातें लेकर आ रही हूँ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.

शर्माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। You know what? जब कहीं भी लड़ाई करने के आपको रीजंस ना मिले ना, तो आप मेरे पास यानी आरजे नुपुर के पास आ सकते हैं। मेरे पास ना एन नंबर ऑफ लिस्ट है जिसमें मैं आपको रीजंस मेंशन करके दूंगी कि आप किसी शख्स से क्यों लड़ाई कर सकते हैं, क्या रीजन दे सकते हैं लड़ाई करने का। पता नहीं क्यों मेरा ना इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, आज से नहीं सालों साल से। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपको बताना चाहेगी कि भाई बहुत टाइम से ना अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान के बीच में जो लड़ाई करवाने के तरीके है ना, वो ढूंढे जा रहे हैं और ढूंढे ही जाते रहेंगे। लेकिन फिर भी शाहरुख खान जिस तरह से सबके सामने अमिताभ बच्चन जी को इज्जत दे देते हैं, आधी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। और मुझे लगता है कि नंबर्स का तो खेल ही खत्म हो चुका है कि भाई किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, किसके ज्यादा लोग पागल हो चुके हैं नाम सुनकर। हाँ मुझे लगता है अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान का कंपैरिजन इज अ रॉन्ग पार्ट, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें निकल कर आई। हाँ जी, अगर हम शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म की फैन फॉलोइंग देखें तो सिर्फ 1 करोड़ के फॉलोअर्स जो है ना वो थोड़े कम निकलेंगे, राइट? तो शाहरुख खान इस रेस में थोड़े से आगे चल रहे हैं और उनके पीछे ही चल रहे हैं अमिताभ बच्चन। आहा, क्या बात है। और उसके बाद नंबर आता है ऋतिक रोशन का, करण जौहर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स सी ये चीजें इनको कितनी माइंड करती हैं या फिर किसी और को। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: की लट्टी।
1: बोल पेट्रोल ते पवाए नहीं। कोई गल नहीं, साड़ी गड्डी ते गुडवेल नाल चलती है।
2: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: जाहिली।
1: What बच्चा, अब प्लीज दिल को ब्लेम मत करो अपनी हरकतों के लिए। Happy World Heart Day from all of us at Radio Masti 24/7 Live।

आपको ऑथेंटिक ब्रांड्स पसंद है, ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन पसंद है, ऑथेंटिक फूड पसंद है, ऑथेंटिक रॉ मटेरियल पसंद है, ऑथेंटिक हर तरह की वो चीज़ें पसंद है जिसमें आपको एक्चुअल स्वाद या एक्चुअल फ्रेग्रेंस आए, राइट? सो व्हाई नॉट ऑथेंटिक नवरात्रि सेलिब्रेट की जाए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं आरजे नबर आपके साथ और याद दिलाना चाहूंगी, नवरात्रि आ रही है मेरी जान। सो सिंगापुर की ऑथेंटिक, डेफिनेटली मैं सिंगापुर गुजराती कम्युनिटी की बात करूं तो ये लेकर आ गए हैं सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। इस 16th, 17th एंड 18th अक्टूबर को ये होने वाली है। कहां? बहुत ज्यादा वाइट, बहुत ज्यादा ग्रैंड एंड प्रीमियम लोकेशन के साथ, लगुना बॉलरूम दूसित थानी, लगुना 11 लगुना गोल्फ ग्रीन सिंगापुर। एंड इसके टिकट्स ना हर बार बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑथेंटिक गरबा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा। ओके, सो लॉग ऑन करो sgs.org.sg/navratri2026। एनीवेज, आपके अंदर नवरात्रि को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है चलो हम भी जान लेते हैं। ओके, चलो मुझे ये बताओ, 9 दिन यानी नवरात्रि कौन सी माता जी को याद करके, किनके 9 रूपों को याद करके इन 9 पवित्र दिनों को यानी नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है? क्विकली व्हाट्सएप या टेक्स्ट करो 9151896 मेरा नंबर। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GG Mart, your personal grocer.
4: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
5: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है.
0: Time to raise the bar.
6: Ramma.
0: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
7: Renuka!
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

भाई पुराने जमाने में एक बात किसी हीरोइन ने बोली थी कि भाई किसी के घर तोड़ने में मेरा कोई योगदान नहीं है, या फिर किसी के टूटे हुए घर को मैं क्या ही तोड़ सकती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो पुराने जमाने वाले डायलॉग है, ये अब रियल लाइफ में बोले जा रहे हैं। किसने भाई? गोविंदा जी की जो र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड है कोमल रानी, इन्होंने बोल दिया है। मतलब इनको कहां से अचानक से फुटेज मिलने लगी है, और ये फुटेज ये डाइजेस्ट भी कर पाएंगी या नहीं, दैट्स अ बिग कंसर्न। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ, और एक तरफ गोविंदा की पर्सनल लाइफ उछल उछल के जो बाहर आ रही है, इतना तो इनका करियर नहीं निकल कर आ रहा है। हाँ, तो सुनीता ओहूजा यानी गोविंदा जी की जो वाइफ है, उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि मेरा घर टूट रहा है, कोई इसे बचा लो। लेकिन एक तरफ जो उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड है गोविंदा जी की, वो अपने सोशल मीडिया स्टेटस लगा रही है कि एक टूटे हुए घर को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। हाँ, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जो था जैसा था वो पहले से था। एक ऐसी औरत जो अपने पति को घर से बाहर नहीं निकलने देती, करियर में कुछ करने नहीं देती, चाहती नहीं है कि वो फिर से आगे बढ़े, वो औरत अब ये बोल रही है कि उसे अपने पति की बहुत चिंता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई इतना बोलने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। बट ये सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से किया जा रहा है, या फिर एक्चुअली में इन बातों का कोई मीनिंग है, ये तो वक्त बताएगा। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बताते बताते कर रही हूँ आपसे बहुत सारी बातें। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट। बाय।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि भाई फुल फ्लेज काम चल रहा है, अच्छी स्पीड में काम चल रहा है, और फिर अचानक से सरकारी लोग आ जाते हैं और आपका काम जो है वो तमाम करके चले जाते हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी हो रहा है। अब आप कहोगे कि अच्छा हुआ होगा, लेकिन एक्टर्स के संग थोड़ी ना हुआ होगा भाई, एक्टर्स के साथ हुआ है। आप अपने अजय देवगन जी को ले लीजिए, उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ शुरू करवा दी, उनकी प्रॉपर्टी है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है हाँ। लेकिन जैसे ही पता चला कि उस प्रॉपर्टी में तोड़ा ताड़ी करने के बाद एक सैलॉन, एक कमर्शियल स्पेस जो है वो प्लान किया जा रहा है, तो भाई खड़े हाथ स्टॉप वर्क नोटिस जो है वो उनके बंगलों में पहुंचा दिया गया। So, अजय देवगन हाँ, अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, अपनी कुछ पर्सनल टास्क की वजह से भी आजकल उभर उभर के बाहर आ रहे हैं हाँ? तो भाई ये सब चलता रहता है, फिल्मी सितारे हैं ये, अगर हेडलाइन नहीं बनेंगे तो क्या आप और मैं बनेंगे हाँ? हमारे पास तो और भी बहुत काम है, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वही काम करते हुए आपको एंटरटेन कर रही हूँ और कुछ बॉलीवुड इनसाइट्स आप तक पहुंचा रही हूँ। कौन मैं, आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: देखो सुनो, जब कोई लड़की बार बार अपने बालों में हाथ फहराए तो आपको पता है एक सवाल पूछ लेना चाहिए, तुमने नया हेयर कट लिया है क्या? हाँ, और फिर वो कहे नहीं मैंने तो कोई हेयर कट नहीं लिया, तो आप समझ जाना कि जिस हाथ से वो अपने बालों को थोड़ा लहरा रही है, उसको टच कर रही है, उसके हाथ में कोई ब्रेसलेट या उसके हाथ में कोई घड़ी होगी जिसको वो फ्लॉन्ट करना चाह रही होगी। तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, अच्छा तुमने रिस्ट वॉच नहीं ली है? फिर देखना उसका जवाब क्या होगा कि तुम भी ना कितना नोटिस करते हो। खैर, मैं आरजे अनुपम सी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाह रही है कि भाई ये जो फ्लॉन्ट गिरी है, हम लड़कियां सीखती कहाँ से हैं? भाई सोशल मीडिया, बॉलीवुड एक्टर्स है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं यार। इतना तो हमें किताबी ज्ञान नहीं मिला है जितना इनसे चलता फिरता ज्ञान मिला है। अभी रिसेंटली सलमान खान अपने उसी रियलिटी शो में होस्टिंग करते हुए नजर आए, जिसमें वो सालों से बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं और अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, सो अभी उनके कपड़े तो ठीक है, उनके चेहरे का गुस्सा भी ठीक है, कटरीना के लिए कंसर्न भी ठीक है, लेकिन उनके हाथों की 80 लाख की रोलेक्स की वॉच रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। आहा, क्या बात है, क्या बात है। वही होता है, होता है, ऐसा ही होता है जब बड़े बड़े लोग जानबूझ के किसी ब्रांड को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। हाँ, बाय द वे मैंने भी और भी बातें स्पॉट करी है, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, अब बताऊंगी कल। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।

और क्या, कुछ भी खाते हो, एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो इसमें दिल का क्या कसूर? Happy World Heart Day from all of us at Radio Masti 24/7 Live.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रचना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Masti 24/7 Live.
4: The music rebels, sing it.
5: नाचने का मन है, मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: प्रणाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
1: दिकीरो दिकीरो
2: Let's go, boy!

0: पार्टी ओवर गो
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन फ्रेशली ब्रूड बीयर

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Your Musty Music Cafe

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: राम भट्ट महेश भट्ट।
1: अर्जुन आएंगे
2: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: मंडे ब्लूज नॉट ऑन आवर वॉच। वेक अप टू वर्ल्ड न्यूज, फ्रेश अपडेट्स और थोड़ा बॉलीवुड का मजा भी। Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mera.
3: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Musti 24/7. Check the app menu for encore show timings.
4: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
4: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: बजी गिटार।
1: क्या धड़कन की जगह गिटार? जरा सोच के देखो। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जोश में रहो।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
4: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सत्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: दिल की बुराई मत करो, नाराज हो गया ना तो बेटे लग जाएगी। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकम टू डियर मस्ती दिल से। एंड बिल्कुल दिल से बात कर रही हूँ मैं, आपकी अंतरा जुड़ चुकी हूँ आपके साथ यहाँ इस वक्त। यू नो, आज शो स्टार्ट करते हुए एज यूजुअल आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग कि हम लाइफ में कितनी बार अपने आप को एडिट करते हैं, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, कभी फ्रेंडशिप के लिए, कभी बिकॉज लोग क्या सोचेंगे, और कभी सिंपली बिकॉज जो हम पहले थे अब वो वर्जन हमारे लिए फिट ही नहीं होता। एंड आई एक्चुअली फाइंड द लास्ट वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। देयर वर थिंग्स व्हिच वर ओके विद मी आज से 10 साल पहले, बट वही सेम चीजें जब आज मेरे साथ होती है ना, I react so differently, and then I ask myself, ऐसा क्या बदल गया? उम्र बदल गई। Because we talk so much about accepting other people when they change and everything, but खुद को change होने की permission देना भी तो equally important है। Maybe something you enjoyed 5 years ago doesn't excite you anymore. Maybe a behavior जो पहले perfectly normal लगता था, वो अब uncomfortable लगता है। Maybe people के साथ रहने का तरीका बदल गया, priorities जो है वो change हो गई, या suddenly you are asking yourself, life में सब करते करते मैं खुद कहाँ हूँ? And none of this necessarily means something is wrong. Sometimes you have simply grown into a different version of yourself. But फिर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जब आप चेंज होते हैं, आपके अराउंड के जो लोग होते हैं जरूरी नहीं उसी स्पीड से चेंज हो, और वहीं से आते हैं सारे सवाल, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस, थोड़ा गिल्ट, मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, ये बोलना सेल्फिश तो नहीं होगा। सो एनीवेज, आज के लेटर्स में जितने भी हमारे पास आए हैं, लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दोज मोमेंट्स। कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल्स नहीं, बस रियल सिचुएशंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और जो हमें हमारे POV से लगता है वो चीज हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9151893 पर। बिल्कुल स्वागत करते हुए डियर मस्ती दिल से पर, मैं अंतरा यहाँ पर फिलहाल आपके साथ।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: रिका, ऊ, सारा, रिका, सारा, रिका।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 के इस खास शो में। आपको तो पता ही है इसका नाम, डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और हमारी चिट्ठियों का ये सिलसिला जो है, चलिए साथ साथ में शुरू करते हैं। यहाँ पर आज की हमारी पहली चिट्ठी किस बारे में है, लेट्स फाइंड आउट। ये कहते हैं, डियर मस्ती, मेरी क्लोज फ्रेंड रिसेंटली ऑलमोस्ट हर प्लान में अपने हस्बैंड को साथ लाती है। He is lovely and मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, but sometimes I just miss spending time alone with my friend. क्या मैरिड फ्रेंड से कहना कभी सिर्फ हम दोनों मिलते हैं अनफेयर या ऑकवर्ड है? I don't think it's actually unfair at all, सोचा जाए तो। So well, dear listener, मुझे नहीं लगता कि it's unfair to ask something like that. मेरी फीलिंग कुछ ऐसी है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो जब आप खुल के एक दूसरे से जो है अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए। एक्चुअली मुझे लगता है आपको बुरा इसलिए भी लग रहा है बिकॉज यू जेन्युइनली यू नो, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई, उनके हस्बैंड से कोई बैर है। अगर पसंद नहीं होता तो इजी था कि मुझे उनका नेचर पसंद नहीं है तो मुझे अलग से मिल लिया कर, बट यहाँ प्रॉब्लम हस्बैंड है ही नहीं। यू जस्ट मिस योर फ्रेंड एंड यू मिस दैट space which you both had, और वो feeling I completely understand, because एक friend जब friend के साथ जब हम अकेले मिलते हैं ना, there is a different version of that friendship which comes in front. कुछ बातें automatically निकलती हैं, कुछ पुरानी जो है बातें सामने आती है, कुछ deep conversations, कुछ conversations which doesn't make sense at all. And ये कभी कभी थर्ड पर्सन के सामने नहीं हो पाती है, चाहे वो थर्ड पर्सन दुनिया का सबसे लवली इंसान ही क्यों ना हो। बट हाँ, इसका दूसरा साइड भी हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए, दैट मे बी योर फ्रेंड इज इन अ फेस जहां पर शी एंड हर हस्बैंड आर जेन्युइनली एंजॉयिंग डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। मे बी उनके लिए ये कंप्लीटली नॉर्मल है एंड शी डजंट इवन रियलाइज दैट यू आर मिसिंग योर वन ऑन वन का टाइम। तो मन में assumption या story बनाने से बेहतर है कि शादी के बाद जो वो बदल गई है and all those things, I think communication is the key. Just tell her. And I would not say कि ऐसे इसको नहीं कहिए कि आपने husband को हर जगह पे क्यों लेके आती हो। Maybe यार you know, sometimes we both, हम दोनों सिर्फ ऐसे जो है कहीं पर quality time spend करते हैं, I miss our जो है time together. देखिए, आप उनके husband को exclude नहीं करना चाहती हैं, आप अपनी friend के साथ कभी कभी connect करना चाहती हैं and that is a complete fair ask. And those are very two different things as well. शादी के बाद friendships change होती है, बट चेंज का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंडशिप की जगह की हर पुरानी जगह डिसअपीयर हो जाए। सो मे बी यू कैन आस्क फॉर दैट कॉफी, आस्क फॉर दैट ब्रंच, कि जस्ट यू एंड मी दिस टाइम, ठीक है? एंड आई थिंक अ गुड फ्रेंड विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। आई रियली होप दिस हेल्प्स, डू लेट मी नो इफ इट रियली डज। ये है डियर मस्ती इतने से ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: कभी आपने सोचा है कि लाइफ में वो पॉइंट कब आता है जब हम कहते हैं कि बस यही वो जगह है, दिस इज इट। रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतरा आपके साथ यहाँ पे चल रहा है डियर मस्ती दिल से। आई हैव माई ओन रीजन टू लव दिस शो, बिकॉज इस शो में

रहते हैं कि बस ये प्रमोशन हो जाए उसके बाद सब फिट है, बस बच्चे सेटल हो जाए तो ही फिट है, बस ये लोन खत्म हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सेव कर ले मे बी एवरीथिंग विल बी फाइन। और हर बस के बाद एक नया बस रेडी खड़ा होता है। तो मुझे जेन्युइनली जानना है दैट व्हेन डू वी डिसाइड दैट वी हैव व्हाट वी हैव इज इनफ, नॉट बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड ड्रीमिंग, नॉट बिकॉज एम्बिशन खत्म हो गई है, बट बिकॉज मे बी एक स्टेज पर अचीवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है enjoyment, कि अब मैं वो ट्रिप करूंगी जो पोस्टपोन करती आ रही हूँ इतना टाइम से, वो हॉबी पिकअप करूंगा, या फिर संडे को कुछ प्रोडक्टिव करना जरूरी नहीं है, या सिंपली अपनी लाइफ को थोड़ा सा और जीऊंगा इंस्टेंट ऑफ कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग इट। बट फिर सवाल ये भी है कि क्या सब कर लिया, नाम का कोई पॉइंट एक्चुअली आता है कि नहीं, या खुद के लिए जीना कोई फाइनल स्टेज नहीं है, उसके लिए हमें लाइफ के बीच में ही जगह बनानी पड़ती है। दीज आर द क्वेश्चंस समटाइम्स आई सिट अलोन एंड आई आस्क माईसेल्फ, एंड आई वाज लाइक आई शुड कम टू डियर मस्ती दल से एंड आस्क यू दिस, कि आप भी क्या इस तरह के सवाल अपने आप से कभी कभी पूछते हो, और जब अगर आपने कभी पूछा तो क्या आपको कुछ जवाब मिला, कुछ समझ में आया, जो भी हो आप मुझे जरूर बताएं 9151896 पर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: यू नो व्हाट, आप बचपन से जिस पर्सनालिटीज के बीच में रहे हैं ना, आप बाय डिफॉल्ट वैसे बन जाते हैं। बड़े होकर आप चाहे जितना बदलना चाहो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हाँ फोर्स करोगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे निपड़ आपके साथ, और मेरे हाथों में जो लेटर आया है वो कुछ अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। हाँ जी, इस लेटर में लिखा हुआ है, डियर मस्ती दिल से, मैं बचपन से ही बहुत सेंसिटिव, आप कह सकते हो हाइपर सेंसिटिव इंसान रहा हूँ, और अब बड़े होने के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरों की बातों का हर्ट जल्दी हो जाता है। वो चाहे ऑफिस हो, घर हो, कैजुअल फ्रेंड्स हो, इन सारी चीजों में मुझे इतना बुरा लगने लगा है कि मैंने अपने फ्रेंड्स ही ऐसे बना लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्लंट हैं और मुझसे बहुत ऑपोजिट साइड रहते हैं, ताकि मैं उनके जैसा बन जाऊं। तो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, मुझे यही करना चाहिए। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप ना अपना एक मोल्ड डिसाइड कर रहे हो। जबरदस्ती किसी और के जैसा बनने की कोशिश करोगे ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, आज के ब्लंटलेस जमाने में ऐसे सेंसिटिव लोग कहाँ मिलते हैं, वंस इन अ रेयर। तो आप अपना जो रेयर ब्यूटी है, जो आपके अंदर रेयर फैक्टर है, उसको मत खोइए। आपको बुरा लगता है, कोई बात नहीं, आप अपने अंदर वो बातें रख लीजिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं कि दूसरों की बातें दिल से लगानी ही नहीं है, दूसरों की गलत बातों का गलत जवाब देना ही नहीं है। और जो लोग आपके जैसे एक्चुअली में बने होंगे ना, आपकी तरह रेयर सिम्टम्स वाले हाइपर सेंसिटिव लोग, आपको कहीं ना कहीं कैसे भी टकरा जाएंगे। सो वेट फॉर अ राइट टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आप खुद को बदल दे जस्ट फॉर अ सेक, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। हाँ,

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: You know what, मुझे अच्छा लगता है जब लोग पूरी दुनिया को ओवर एस्टिमेट और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं, इसलिए नहीं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट है, बल्कि इसलिए आप ऐसा करते हैं बिकॉज आप बहुत ग्राउंडेड है, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, सो डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड जब लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना चीजों को लेकर, तो समझो उनकी जो नैया है ना वो डूबने वाली है ना। अभी एनीवेज मेरे हाथों में जो लेटर आया है, उन्होंने मुझे क्या बोला है, हाय डियर मस्ती दिल से, मुझे ऐसा लगता है मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। मतलब मैं जिस चीज में इन्वेस्ट करता हूं वो चीज मानो बर्बाद होने वाली है। मतलब अब मुझे ना इस बात पर भी बिलीव होने लगा है कि डेस्टिनी जैसी भी कोई चीज होती है, बिना किस्मत के कुछ नहीं मिलता है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगी कि देखो, सिर्फ किस्मत से ना तो कुछ बन सकता है, सिर्फ किस्मत से ना कुछ बिगड़ सकता है। और ये मैं किसी और की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं सेल्फ रियलाइजेशन पर, अपनी लर्निंग्स पे बात कर रही हूँ कि अगर हमने मेहनत ना करी होती आटा गूंथने की या रोटी बनाने की या तवे पे उसे डालने की, तो शायद आपकी प्लेट जो है ना वो खाली रह जाती। तो अगर कोई मैजिक ऐसा होता जो हमें रातों रात ऐसे फूड प्रोवाइड कर देता, तो आज तक हमारे सामने आ गया होता। हाँ, तो आप अपनी डेस्टिनी को तब तक मत कोसिए जब तक आपने अपना 200% हार्ड वर्क ना किया हो। और अपनी गलतियों से सीखना इज एन आर्ट, तो क्या पता आप ही आपका ये आर्ट फॉर्म सीखने का वक्त चल रहा हो। यू नेवर नो कब जो है ना सब कुछ बदल जाए और आपकी जो पुरानी लर्निंग्स है ना वो अचानक से काम आ जाए। सो डोंट लूज योर थॉट एंड डोंट लूज योर होप।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. भाई चिट्ठियों का सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए। मैं आपके अंतरा यहाँ पर आपके साथ एंड सीधा अगली चिट्ठी की ओर बढ़ते हुए। ये कहते हैं डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉन्स्टेंटली मेरी इंग्लिश करेक्ट करती रहती है, प्रोनंसिएशन हो, ग्रामर हो, एक्चुअली यू से इट लाइक दिस, ऐसे करके। सो I know she probably means well, and sometimes she's even right. But बार बार होने पर I start feeling conscious while talking to her. किसी की intention helpful हो but उसकी help आपको small feel कराए तो क्या कहना चाहिए? Okay. Why it is relatable? Because yeah, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। My English is not that great, okay? And कई बार होता है कि मुझे correct कर दिया जाता है, but all in good books. So intention और impact है एक difference होता है, my dear listener. So हो सकता है आपकी जो friend हो, intention उनकी genuinely अच्छी हो, maybe उनके mind में वो आपकी help कर रही है, but अगर हर दूसरी line के बाद correction आ रहा है, तो naturally आपका focus conversation से हटकर अपने words पे चला जाता है कि ये word सही बोला, grammar तो ठीक थी, अब फिर से ये correct करेगी, और फिर conversation नहीं रहती, English वाइवा लगने लगती है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि करेक्ट करना ही बंद कर दो, बिकॉज मे बी समटाइम्स यू एक्चुअली आई एम श्योर अप्रिशिएट इट एज वेल। इंस्टेड मे बी आई वुड टेल हर हाउ एंड व्हेन यू वांट दैट हेल्प। डज दैट मेक सेंस? समथिंग लाइक कि यार आई नो यू मीन वेल एंड आई एक्चुअली डोंट माइंड यू करेक्टिंग मी, बस कॉन्वर्सेशन के बीच में बार बार होता है ना, तो आई बिकम वेरी कॉन्शियस, अगर कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो तो बाद में बता देना। How about that? You know, just saying it in that way is also, again, communication is the key. आप की अगर अच्छी दोस्त हैं, I'm sure that she will get it. आप उसकी intention reject नहीं कर रहे हैं, you are simply telling her that उसका impact आप पे क्या होता है. And if she says that, you know, अरे मैं तो तुम्हारी help कर रही थी, तो yeah, I know, इसीलिए तो तुमको इतने खुल के बता रही हूँ कि मुझे किस तरह की help actually helpful लगेगी type of thing. And I think ये सिर्फ English corrections के लिए नहीं है, कभी कभी people love us, they advise us and help us with the best of intentions. But good intention automatically good impact guarantee नहीं करता, और किसी को ये बताना that I know you mean well, but this doesn't make me feel that much great, उनकी काइंडनेस को रिजेक्ट करना भी नहीं होता। इट इज सिंपली हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड यू ऑल्सो बेटर। आई होप आई मेक सेंस एंड आई होप दिस हेल्प्स। ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusat Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
3: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
4: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
5: टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऐसा होता है कि आपको जिस दिन ना एक कैंडी मिल गई ना, तो अब आपकी इच्छा होती है कि चॉकलेट मिलनी चाहिए। जिस दिन आपको चॉकलेट मिल गई, आपको चॉकलेट केक की इच्छा हो जाती है। जिस दिन आपको चॉकलेट केक मिल गया ना, आप ना कुछ और बड़ी इच्छा लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा होना भी सही है। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, ये गलत बात है। फिलहाल मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। हां जी, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है वो कह रही है कि मैं अपनी घर परिवार की पहली ऐसी लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली, देश से बाहर निकली एंड एक कुछ लेवल अचीव कर लिया है। बट मैं जैसे ही एक माइलस्टोन अचीव करती हूँ, मैं सेकंड की इच्छा करने लगती हूँ, और ऐसा करते करते मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी बैठ कर अपने आप को उसकी ट्रीट दी है, अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपाया है कि वाह यार कितनी दूर तक आ गए हो आप? हाँ, मतलब जो आपने सोचा नहीं था आप उससे ज्यादा कर लिया है। आप सेल्फ सेटिस्फाई कैसे होगे जब खुद बैठकर आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करोगे? कोई और नहीं आने वाला है आपकी तारीफ करने, आपको खुद से ही खुद की तारीफ करनी है। आपको खुद को थैंक्स बोलना है, खुद को वो तीन मैजिकल वर्ड बोलने हैं, खुद को एक छोटी सी ट्रीट और एक गिफ्ट देना है, और अपने आप को ऑनर करना है कि ओ तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद ही सही कुछ नया किया जाएगा। सो मेक योर सेल्फ सेटिस्फाई फर्स्ट, उसके बाद छोटे से लेकर बड़े माइलस्टोन जो है ना वो अचीव करने के बारे में सोचना।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे जुड़ चुकी है और अपनी अगली चिट्ठी लेकर बिल्कुल तैयार है। मेरी अगली चिट्ठी कहती है दैट डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड ऑफ्टन लोगों के फोटोज भेजकर उनके वेट या फिर उनके कपड़े या लुक्स पर कमेंट्स करती है। पहले मैं भी पार्टिसिपेट करती थी बट अब मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। प्रॉब्लम यह है कि सडनली मना करूंगी तो लगेगा कि मैं मॉरल पुलिस बन रही हूँ। किसी हैबिट को आउटग्रो करने के बाद उसे स्टॉप कैसे करें विदाउट जजिंग अदर्स। There's a very nice thing about this letter and I'll tell you what, कि आप ये नहीं कह रही कि मेरी फ्रेंड गलत है, आप कह रहे हो कि मैं भी करती थी बट मुझे अभी अच्छा नहीं लगता। एंड आई थिंक दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि ग्रोथ यहाँ पर ही हो रही है। हम सबकी लाइफ में ना माय डियर लिसनर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एक टाइम पर परफेक्टली आपको नॉर्मल लगता था, फिर पता नहीं कब वो सेम चीज अनकंफर्टेबल लगने लगती है। हाल ही में मैंने किसी को ये बात कही थी कि अब हम उस उम्र में नहीं रहे। The 20-year you is a very different person than the 30 or the 40-year you, and you know that, right? उस वक्त प्रॉब्लम ये होती थी कि अब मैं सडनली संत कैसे बन जाऊँ। तो संत बनने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेंड को लेक्चर देने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोई फोटो आए और कॉमेंट हो, यू कैन जस्ट सिंपली स्टॉप टू पार्टिसिपेट and that is all I think you can do. Change the subject, don't add apna comment, ya casually bol dijiye ki pata nahi kyun aajkal mujhe logo ke looks discuss karna, I don't like it, I feel a little bit uncomfortable. So you don't have to tell someone to not do that, because दूसरे का जिंदगी आप नहीं जी सकते, दूसरे का बिहेवियर एंड एटीट्यूड भी आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल यू कैन डू इज मेक द चेंज इन योरसेल्फ, बिकॉज आई थिंक दैट इज फेयर इनफ। बोल दीजिए हाँ करती थी बट अब अच्छा नहीं लगता, इट्स एज सिंपल एज दैट। हम अपने पुराने बिहेवियर को डिफेंड करने के लिए लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ी ना आए हैं। आप चेंज कर सकते हैं विदाउट प्रिटेंडिंग कि आपने कभी वो चीज की ही नहीं, एंड मे बी दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड जजमेंट एज वेल, बिकॉज ग्रोथ सेज दैट दिस डजंट फील लाइक मी एनीमोर, जजमेंट सेज हाउ कैन यू स्टिल बी लाइक दिस। जो ग्रोथ है उसको हमेशा हमें चूज करना है एंड आगे बढ़ते रहना है। I hope this helps, my dear listener. Yeh hai Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7.

0: धड़कन।
1: हेलो, गाने मत गाओ, धड़कन मदहोश है ना, तो चेकअप के लिए जाओ।
2: हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन, और वो सबसे ज्यादा कभी कभी जिंदगी में चैलेंजिंग हो जाता है। व्हाई एम आई बीइंग सो सीरियस विद समथिंग लाइक दिस, आई टेल यू व्हाई। वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ। एंड यस, इट्स दैट टाइम जब अंतरा यहाँ पर बिल्कुल अकेली नहीं होती, हमारे संघर्ष साथी श्रीधर जो है हमारे को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। वेलकम श्रीधर टू डियर मस्ती।
2: Always a pleasure, Antra. Thanks for inviting me here.
1: श्रीधर वही बात कर रही हूँ, इमोशन खुद के समझने में कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। उसी को कंट्रोल करना कि कैसे उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाए, कितना चाहिए, कितना कम, कितना ज्यादा। बट वेल, पीपल विल गेट टू नो बिकॉज आई नो अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो आपके केस की तरफ डायरेक्टली चलते हैं एंड टेल एवरी वन अबाउट इट।
2: Yeah, this is a very peculiar case. Kabhi socha hai ki if you call somebody and they don't answer the phone, how annoying it can get. And this was a case of one of my clients who even broke the phones if people did not answer his calls. तो एक बार दो बार ट्राई करता था, देन व्हेन ही ट्राइज टू कॉल सब्सिक्वेंटली दे डोंट आंसर, कभी कभी 10 कॉल कर देता, देन ही जस्ट ब्रोक द फोन, यू नो। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ एजिटेशन।
1: वाओ, ओ माय गॉड, आई कांट इवन इमेजिन। ए, मुझे लग रहा है कि कितना खर्चा हो जाएगा, फोन तोड़ दिया, दैट इज माय फर्स्ट थिंग। बट ऑल्सो द फैक्ट दैट जो मैं बात कर रही थी, समटाइम्स यू योरसेल्फ आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट वन इमोशन ऑफ योर्स व्हिच जस्ट काइंड ऑफ गेट्स आउट ऑफ योर हैंड। क्या करे उसको लेकर, आई थिंक क्या करे का ही जवाब लेकर मैं और श्रीधर वापस आते हैं। बट आप भी हमें बता सकते हो कि अगर इस तरह का आपका कोई दोस्त है, अगर ऐसे बिहेव करता है, तो व्हाट डू यू थिंक, यू डू यू हैव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन दिस? ऑडियंस 9151896 3, यू कैन राइट टू अस एंड वी विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स एज वेल। बट फिलहाल के लिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। श्रीधर, लेट्स कम बैक एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रैटेजी आपने इस केस को लेकर अपनाई। आई रियली वॉन्ट टू नो, सो स्टे ट्यून्ड।
2: श्योर, या डेफिनेटली।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusat Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: Welcome back to Dear Masti Dilse. This is your Sangharsh Sati Sridhar with the ever enthusiastic Antara.
2: जी हाँ बिल्कुल, संघर्ष साथी के साथ मैं भी इनकी साथी फिलहाल यहाँ पे। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक केस के बारे में जो श्रीधर लेकर आए हैं उसके बारे में बात कर रहे थे कि बंदा जो है वो उसको अपना एंगर इशू एंग्जाइटी जो होती है उसको जब वो किसी को कॉल करता है एंड दैट पर्सन डजंट रिस्पॉन्ड तो वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि कई बार तो उसने फोन ही तोड़ दिया। सो श्रीधर डायरेक्टली आई वॉन्ट टू नो दैट वॉट इज दैट थिंग विच यू सजेस्टेड एंड whether it worked or not for him.
1: अगेन रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं इसको, तो ये जानना जरूरी था कि ये कब से शुरू हुआ। एंड दिस गाय इज 48 इयर्स ओल्ड, ही इज नॉट अ यंगस्टर। तो 48 इयर्स ओल्ड, थोड़ा बातचीत करने के बाद आई गॉट टू नो दैट हिज मदर यूज्ड टू वर्क आल्सो, तो घर में अकेला था। एंड तब वी हैड दोस डायल फोन, सो दैट वॉज द टाइम व्हेन ही हैड सम इमोशनल इश्यूज एट स्कूल एंड बुलिंग ऐसा कुछ चल रहा था। एंड ही यूज्ड टू ट्राई सो मेनी टाइम्स टू रीच out to his mother that you would never get through. Matlab wo government office, you know how it is, phone to bajta hi rehta hai and nobody answers it and things like that. So this was built up frustration since he was what, 12 years old or something like this. So it kept rubbing on to that. So once we knew that this was the main reason, then we kind of have caught the टाइगर बाय द नेक। तो अब एक थोड़ा सा कंट्रोल आ ही चुका था कि हाउ टू हैंडल दिस। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट वे दैट आई सजेस्टेड टू हिम, ये मत सोचो कि दे आर नॉट पिकिंग अप द फोन, जस्ट अज्यूम दे आर इन द टॉयलेट। कभी कभी इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, वी नीड समथिंग टोटली इम्प्रैक्टिकल दैट एक्चुअली वर्क्स। एंड एवर सिंस somehow after he got to know why he was having this issue, his irritation levels drastically dropped. So up to yes, I mean hum log even we get angry sometimes when our parents don't pick up and things like that, but it's more or less under control. More or less it's under control now. And main bolta hu abhi to mobile sab hai, so I just tell him to give a message, he's called back. And hamesha he noticed that within 2 or 3 minutes the call would come back. So that kind of helped him a lot maintaining his mental sanity.
2: Also the fact that he realized that something is really not okay with this emotion which is anger of his and asking for help. Guys, ye sabse zyada important step hai. If you are feeling ki something is off, asking for help is not bad.
1: Yeah, and definitely Ansa. And you see, kabhi kabhi we think just a phone call, why is it so important? But if it is affecting the daily work, if it is affecting your mental stability like this, then it is something to reach out.
2: That is true. And for all the kids who are staying away from their parents, if your parents are not picking up your call, it is okay. You can get angry with them. This is not that. But thank you, Sridhar. Thank you for being with us again, yet again today. And we'll again see you on the next episode. Aap kahin mein jaiye because we are here. We are right here and we'll continue with our Safar of Dear Masti. Thanks, Sridhar.
1: Thank you, Ankara. Bye.

0: कीजिए मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऐसा होता है, दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल पता है क्या होता है, कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। ये सवाल छोटे से लेकर बड़े होने तक हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाता है कि हम अपने बारे में कुछ ही वर्ड्स में किसी को क्या ही बता सकते हैं यार। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे नूपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली हमारी आदत हो चुकी है कि पूरी दुनिया के बारे में जानना है, सब कुछ समझना है, लेकिन खुद के बारे में जब बताने की बात आती है ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। चलिए, मेरे हाथों में जो लेटर है वो भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। सो जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है, डियर मस्ती दिल से, मैं ना बहुत ही हसमुख इंसान हुआ करता था और अभी भी बहुत ज्यादा खुश इंसान हूँ, हसमुख नहीं हूँ लेकिन खुश इंसान हूँ, पर मेरा चेहरा ना बहुत ही रूड कैटेगरी में आ चुका है। मैं हंसना भूल चुका हूँ और कोई मुझसे कहता भी है कि चेहरे पर जरा स्माइल लाओ, फोटो अच्छी नहीं आ रही है, तो मुझसे हंसा नहीं जाता है। अब लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ, बस मेरे लुक्स को लेके जो टॉन्ट या कमेंट्स आते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। सो जिन्होंने मुझे ये लेटर लिखा है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब आप ये लेटर लिख रहे थे तो आप हंसते हुए लिख रहे थे या उसी रूड चेहरे के साथ ही लिख रहे थे? दिक्कत तो यहाँ है। चलिए, दुनिया तो आपको देख रही है लेकिन आपने कभी खुद को देखा? हर रोज अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े से ऑब्जर्व करो। हाँ, और किसी को नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में खुश हो और आपको किसी को बताना भी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि चेहरा थोड़ा स्माइलिंग नजर आता है ना, तो सबको लगता है कि वाओ, मतलब ये कितना अच्छा नेचर का बंदा है, इससे मिलो तो इसके चेहरे की स्माइल देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। तो आपका इस लेवल तक का एक चेहरा होना चाहिए। एक्सप्रेशंस बने किस लिए हैं? ताकि हम इंसान उसे दिखा पाए। सो मेक अ प्रैक्टिस, जब आप सुबह सुबह टूथ ब्रश करें, फेस वॉश करें या अपने आप को फाइनल लुक में देखें ऑफिस जाने से पहले, तो एक एक बार चेहरा देखते हुए स्माइल कर दीजिए। हल्की सी ही सही, हल्की सी ही हंसी लड़कों के चेहरे पे सूट करती है, लेकिन ट्राई टू प्रैक्टिस ना, टेक अ सेल्फीज एज वेल, है ना। हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में इतना दब गए हों कि आप भूल गए कि चेहरे पर एक स्माइल रखना कितना जरूरी है। On this note.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट binge watching.
2: Healthy खाओ, protein खाओ, healthy खाओ, protein खाओ.
3: Healthy munching का perfect partner, आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
5: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हाँ जी, सो विद दैट आज के डियर मस्ती दिल से इस शो का और इस एपिसोड का टाइम हो गया है खत्म। रेडियो मस्ती 24/7 मैं अंतरा यहाँ आपके साथ, एंड आज की कॉन्वर्सेशंस काफी डिफरेंट रही, इमोशंस काफी डिफरेंट रहे, चाहे वो मेरी चिट्ठिया हो, चाहे नुपुर रेणुका या फिर हमारे संघर्ष साथी श्रीधर की चिट्ठिया हो। बट एक थॉट जो मुझे बार बार आ रहा था सबकी बातें सुनते हुए कि हम बदलते रहते हैं एंड दैट्स ओके। कभी हम किसी फ्रेंडशिप में कुछ और उम्मीद करने लगते हैं, कभी जो चीज पहले फनी लगती थी वो सडनली अनकंफर्टेबल लगने लगती है, और कभी लाइफ के बीच में खड़े होकर मन करता है पूछने का कि अब क्या, खुद के लिए कब जिएगे। एंड मे बी हर चेंज को एक्सप्लेन करना या जस्टिफाई करना भी जरूरी नहीं होता। नहीं, आप 5 साल पहले जो थे जरूरी नहीं आज भी एग्जैक्टली वही हो, और वो पॉसिबल भी नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होगी, आपके रिलेशनशिप्स चेंज होंगे, आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस भी चेंज होगी। बस एक चीज, जब आप चेंज हो रहे हैं, ट्राई नॉट टू जज द पर्सन यू यूज्ड टू बी, बिकॉज वो वर्जन भी आप ही थे, उसने ही तो आपको यहाँ तक पहुंचाया है। सो मे बी इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मैं पहले ऐसी क्यों थी, जो मैं कभी कभी अपने आप से सच में कहती हूँ, बट आई हैव चेंज्ड दैट। I now say to myself that हाँ, मैं तब ऐसी थी, आज थोड़ी डिफरेंट हूँ, एंड लेट्स सी कल कौन सा वर्जन मिलता है आपको। Well, इसी स्माइल और इसी बात के साथ मैं अंतरा, on behalf of all the other jocks who joined us this evening and all of you, मिलूंगी फिर कुछ ऐसे ही चिट्ठिया के साथ, ऐसे ही थॉट्स के साथ on Dear Masti Dil Se। तब तक के लिए जो फील करते हैं उसे फील कीजिए, जो कहना है कह दीजिए। Dear Masti Dil Se par. Good night.

0: है।
1: व्हाट बच्चा, अब प्लीज दिल को ब्लेम मत करो अपनी हरकतों के लिए। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी है?

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: यार हमारा तो धक धक करता है. हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.

आप सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। आप सुन रहे हैं रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो स्टेशन सिंस 2009। और जिस आवाज को भी आप सुन रहे हैं, जिसने आपका स्वागत किया, उसे आप प्यार से कहते हैं समर लेजेंड्स वाला। और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बॉलीवुड के मशहूर मारूफ सितारों की महफिल, जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। 1943 की मुंबई की एक सुबह आई है। राइटर राजा राव ने अपने छोटे से कमरे के फर्श पर सोए हुए एक 20 साल के स्ट्रगलिंग एक्टर लड़के को झंझोड़ते हुए उठाया। लड़का आंखें मलते हुए उठा तो राजा राव ने कहा, एक्टर मोतीलाल से मिलोगे? मोतीलाल उसी बिल्डिंग में एक आलिशान फ्लैट में रहते थे और एस्टैब्लिश एक्टर थे वो। राजा राव ने जब उस लड़के को मोतीलाल से मिलवाया तो मोतीलाल ने लड़के से पूछा, बरखुरदार कौन सी चीज तुम्हें लाहौर से यहाँ मुंबई ले आई? घबराए लड़के ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, वही जो आपको दिल्ली से यहाँ तक ले आई सर। तो स्टार बनना चाहते हो? मोतीलाल जी ने कहा। लड़के ने कहा, आपके जैसा। लड़के की आंखों में हौसला देखकर मोतीलाल ने कहा, मुझसे बेहतर क्यों नहीं? बस फिर क्या था सिंगापुर, वो लड़का स्टार बना और सबसे बेहतर स्टार बना। इतना बड़ा स्टार बना कि आज तक हिंदी सिनेमा उसकी रोशनी में जगमगाता है और उस स्टार का नाम है द एवरग्रीन देवानंद।

जल्दी जल्दी बोलने का अंदाज, तेज चलने का स्टाइल, चुटकी में लिए फैसले और पल भर में बनाए दोस्त, ये अंदाज था देवानंद का। एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदी फिल्मों में रोमांस का दूसरा नाम देवानंद हो गया था, जो हमेशा नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर देते हैं। तो सिंगापुर आज के शो में हम इसी लेजेंड के बारे में बात करेंगे, इन्हीं के सुपरहिट गाने सुनेंगे। सो कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव।

पे जिस तरह शाम का

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या late night binge watching.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Healthy munching का perfect partner. आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: GG.
2: Krishival nuts only on GGmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ और आज दीवानंद स्पेशल है। दीवानंद साहब का नाम आते ही एक अलग से एनर्जी आ जाती नहीं, एक चेहरा सामने आ जाता है, यूं लगता है जैसे एक इंसान हेट लगाए स्कार्फ हाथ में लिए और टेढ़ी गर्दन किए हुए कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि
1: आप मेरी मरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिया जाए।
0: जी हाँ, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी थे देव साहब। 23 सितंबर 1923 को एडवोकेट किशोरीलाल आनंद के घर शकरगढ़ पंजाब में, जो पाकिस्तान में, यहाँ इनका जन्म हुआ। ये चार भाइयों में से तीसरे नंबर के। एक बड़ा भाई वहीं शकरगढ़ में पिता की तरह डॉक्टर था, बाकी तीनों फिल्मों में थे, यानी इनसे बड़े चेतन आनंद, फिर ये, और इनसे छोटे गोल्डी यानी विजय आनंद। घर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा, क्योंकि पिताजी लॉयर थे और बड़े भाई भी लॉयर थे। इनकी एक छोटी बहन है शीला शांता कपूर, जिनके बेटे मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर हैं। तो डलहौजी, जो हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश में है, वहां से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर धर्मशाला से इन्होंने अंग्रेजी में बीए किया। इसके बाद ये लाहौर आ गए अंग्रेजी में एमए करने के लिए। पढ़ाई तो ये कर ही रहे थे लेकिन मन किसी और चीज में था और वो थी एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आज देवानंद स्पेशल शो सुन रहे हैं आप। अगर कोई फरमाइशी गाने हैं आपके देव साहब के तो हमें जरूर बताएं हमारे फेसबुक पेज पर आकर, और सुनते रहें रेडियो मसी 24/7 लाइव।

0: नहीं।
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. जोश में रहो।
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square kiosk number 12, 11th to 25th September.
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
6: जीजी
4: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
6: GG Mart, your personal grocer.
7: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

आपका एक बार फिर से स्वागत, वेलकम बैक सिंगापुर लेजेंड्स। फिर से आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, जहां आज के फनकार हैं देव साहब। एक्टर बनने की इच्छा लेकर देव साहब अपने पिता के पास गए और बोले कि मुझे एक्टर बनना है। पिता ने एक ही बार में मना कर दिया, लेकिन देव साहब ने तो ठान ली थी कि बस अब एक्टर ही बनना है। तो 19 सितंबर 1943 को 35 रुपए उधार लेकर धर्मदेव किशोरीमल आनंद लाहौर से ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गए साहब। यहाँ किसी को वो जानते तो थे नहीं, लेकिन कुछ दोस्त इनके यहाँ रहते थे, तो कभी किसी दोस्त के पास तो कभी किसी और दोस्त के पास, बस ऐसे गुजारा हो रहा था, कुछ दिन काट रहे थे। एक्टर बनना था तो थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर में छोटे मोटे रोल ये करते रहे, तो यूं करते करते ख्वाजा अहमद अब्बास के लिखे नाटक जुबैदा में इन्हें एक लीड रोल मिल गया साहब, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर एक्टर बलराज साहनी साहब। 5 महीने के रिहर्सल के बाद खराब परफॉर्मेंस की वजह से बलराज साहब ने देव साहब को नाटक से बाहर कर दिया। सिंगापुर कोई और होता तो इस बात के बाद ट्रेन पकड़कर लाहौर चला जाता, लेकिन देव साहब ने ट्रेन तो पकड़ी मगर लाहौर की नहीं, बल्कि अब पुणे की। पुणे पहुंचकर ये सीधे पहुंचे प्रभात स्टूडियोज। यहाँ ये स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूराम पाई के ऑफिस में गए, और जब आधे घंटे के बाद वो बाहर निकले तो उनके हाथ में थी प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक। जी हाँ, उसके हीरो बनकर ये वहां से निकले, यानी यहाँ इनको पहली फिल्म मिल गई। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही, और न सिर्फ ये फिल्म बल्कि प्रभात स्टूडियो के बैनर तले बाकी तीनों फिल्में भी चली नहीं। उम्मीदों की पोटली लिए देव साहब फिर से ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गए, लेकिन फिर एक दिन इनकी किस्मत खुली मुंबई की लोकल ट्रेन में, जब इनकी मुलाकात हुई मशहूर राइटर इस्मत चुगताई और उनके डायरेक्टर पति शाहिद लतीफ के साथ। ट्रेन के स्टेशन के आने से पहले ही देव साहब की शोहरत का स्टेशन आ चुका था, और 1948 में शाहिद लतीफ के डायरेक्शन में आई फिल्म जिद्दी ने देव साहब के स्टार बनने की जिद को पूरा कर दिया।

तो सिंगापुर पहले कुछ गाने सुन लेते हैं देव साहब के, कहानी को हम जारी रखेंगे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ, सुनते रहिए। और कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आ जाइए।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

वेलकम बैक सिंगापुर, यह है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो, रेडियो मसी सिंस 2009, और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से, जहां आज के फनकार हैं द बादशाह ऑफ रोमांस देवानंद साहब। देवानंद की पहली फिल्म हम एक के बारे में हमने बात की और वो फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इनको एक सच्चा दोस्त मिल गया था इस फिल्म से। दरअसल गुरुदत्त जो बाद में एक बेहतरीन डायरेक्टर और एक्टर बने, ये उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो फिल्म करते करते इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और फिल्म खत्म होने के बाद देवानंद और

आनंद भी डायरेक्टर बनना चाहते थे और वो कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे। सो इस तरह इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म आई 1951 में। फिल्म का नाम था बाजी, और क्योंकि वो अपने एक दोस्त से वादा कर चुके थे देव साहब, तो इसलिए इस फिल्म का डायरेक्शन दिया उन्होंने उसी दोस्त को, यानी गुरुदत्त साहब को। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी के साथ गुरुदत्त और देव साहब का करियर भी चल पड़ा। वेल, अभी हम भी चलते हैं, कुछ गाने सुनते हैं। मतलब आप कहीं मत जाइएगा, गाने खुद ही आ जाएंगे आपके पास। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं भी लौट आऊंगा इन गानों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

सामिन का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ मैं समर लेजेंड्स वाला। रेडियो मसी 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं। ये है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। नवकेतन के बैनर में बनी पहली फिल्म सुपर हिट रही। जहाँ आज मैं देव साहब की स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, तो इस फिल्म में देव साहब को एक ऐसा साथी मिला जो जीवन भर इनके साथ रहा। इस फिल्म में देवानंद के अलावा गीता बाली और कल्पना कार्तिक थे। कल्पना कार्तिक से ही इन्होंने बाद में शादी कर ली और इनके साथ कई सारी फिल्में भी की जो लगभग कामयाब ही रहीं। इस फिल्म में देव साहब और गीता बाली का एक गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था जो गीता दत्त जी ने गाया था, और ये गीता बाली के और गीता दत्त जी के दोनों के ही सबसे बड़े हिट नंबर्स में से एक है।

0: और इस फिल्म के बाद देव साहब और कल्पना कार्तिक ने एक साथ कई फिल्में की, जैसे आंधियां, टैक्सी ड्राइवर,
1: दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए।
0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो ये बताता है कि हिंदुस्तान में, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में फिल्मों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है। यानी जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कोलकाता में एक आदमी जिसकी सरकारी नौकरी थी, वो देव साहब के इस रोल से इतना इम्प्रेस हुआ कि वो नौकरी छोड़कर टैक्सी ड्राइवर बन गया। बताइए, कुछ ऐसे भी कमाल के लोग होते हैं दुनिया में। बहरहाल, टैक्सी ड्राइवर के अलावा हाउस नंबर 44, 9211 ये फिल्में उन्होंने की, और इनका म्यूजिक तो कमाल का होता था साहब। और आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि देव साहब की फिल्मों का म्यूजिक हमेशा ही सुपर हिट रहता था, भले स्टोरी कैसी भी हो। इनकी फिल्मों में ज्यादातर नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हर फिल्म में ही शायद एसडी बर्मन साहब का ही म्यूजिक था शुरू शुरू की फिल्मों में। बाजी के साथ जो इनका साथ बना वो फिर कभी रुका नहीं।
2: खोया

Well, it's time to take a break. लेकिन ब्रेक लेकर आता है आपके लिए गाने, इन्हें एंजॉय कीजिए और वापस आइए. समर कर रहा है आपका इंतजार रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, गानों के उस पार.

0: बजी गिटार।
1: क्या धड़कन की जगह गिटार? जरा सोच के देखो। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, फिर से जिसे सुना रहा है समर लेजेंड्स वाला। मैं आपका दोनों बाहें फैलाकर एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत है आपका। देव साहब की हम बात कर रहे हैं, एवरग्रीन देवानंद साहब की। वो एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही कमाल के डायरेक्टर भी थे। देव साहब ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी प्रेम पुजारी, वहीदा रहमान के साथ थी ये फिल्म। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन भैया गाने उसके कमाल थे, रंगीला रे, या फिर शोकियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। मशहूर कवि गीतकार नीरज साहब ने इसके गाने लिखे थे, और वो गाना कैसे भूल सकता हूँ मैं, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुमको लिखी रोज पाती, आहा क्या बात है। लेकिन हुआ क्या कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी ना, वो लोगों को पची नहीं, तो ये फिल्म चली नहीं। लेकिन देव साहब हार का मानने वाले थे भाई, जो इंसान सिर्फ 35 रुपए लेकर अकेला मुंबई आकर स्ट्रगल कर इतना बेहतरीन एक्टर बन सकता है, एक प्रोडक्शन हाउस खोल सकता है इतनी जल्दी, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो इंडस्ट्री में आए थे उसके 6 साल बाद तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था। तो साहब 1971 में देव साहब ने अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट रही और इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। हर तरह से ये फिल्म कमाल की थी, और इस फिल्म के साथ देवानंद साहब बड़े डायरेक्टर्स की सूची में, फेहरिस्त में शामिल हो गए।

लेकिन इस गजब की फिल्म का आइडिया देव साहब को आया कैसे? भाई ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद देव साहब की बेहतरीन फिल्मों से जबरदस्त नगमे हम चुनकर लाए हैं जिन्हें आप जरूर जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी अंकल आंटी सुन रहे होंगे जो अबव 55 होंगे वो देव साहब की इन फिल्मों से अपनी जवानी के दिनों को जरूर याद कर रहे होंगे और इन गानों के साथ एक बार फिर से रोमांटिक हो जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा और रूमानी हो जाए, ये गाने सुनते हैं। आप कहीं ना जाए और अगर जाए भी तो हमें साथ ले जाए। भाई हम तो है रेडियो मस्ती 2009 से लगातार आपके साथ, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो। स्टे कनेक्टेड।

रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, मैं समर। वेलकम बैक। देवानंद साहब आज हमारे लेजेंड, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। वैसे देव साहब की जिंदगी के किस्से आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर, और अगर आपको भी कोई किस्सा याद है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वेल, हम देव साहब की दूसरी फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी हरे रामा हरे कृष्णा, उसकी बात कर रहे थे। इस फिल्म का आइडिया कैसे आया उन्हें? एक बार देव साहब के दोस्त जर्मनी से आए, जर्मन थे वो, तो वो आए और बोले कि यार मुझे ना काठमांडू में आकर मिलो। देव साहब लकीली उन दिनों में काठमांडू में ही थे, तो बोले आ जाओ यार। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में वो जर्मन दोस्त वहाँ आए, तो साहब दोनों मिले काठमांडू में। शाम को जब घूमने के लिए वो बाहर निकले होटल से, तो उनके दोस्त ने कहा कि यार यहीं पास में कुछ फॉरेनर्स आए हुए हैं जो हिप्पी कल्चर वाले लोग हैं, चलो वहाँ चलते हैं। देव साहब ने पूछा, हिप्पी ये कैसे लोग होते हैं? दोस्त ने कहा, ये लोग चरस गांजा पीकर मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, इनका एक अलग ही कल्चर है, गाते हैं बजाते हैं और वीड लेकर सो जाते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं, नहाते धोते भी नहीं, बड़ा अजीब तरीका इनका रहन सहन है। तो साहब अब देव साहब ने कहा, चलो भाई देख लेते हैं कैसे हैं ये लोग। ये दोनों पहुंच गए और वहां देखा कि इन सब फॉरनर्स के बीच में एक इंडियन लड़की बैठी है और वो भी चरस पी रही है। देव साहब ने देखा और सोचा कि यार ये कौन है जो इन गोरों के बीच में बैठी हुई है। तो देव साहब ने बारमैन को बुलाया और कहा कि यार मुझे उस लड़की से मिलना है, उससे कहो मुझसे आकर मिले। बारमैन ने उस लड़की को बुलाया और देव साहब से मिलवा दिया, और अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने अगले ही दिन की मीटिंग फिक्स की। दूसरे दिन दोनों फिर से मिले। जब देव साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि उसका नाम जसबीर है और खुद को वो जैनिस बोलती है और कनाडा से अपने घर से भाग कर आई है। देव साहब ने पूछा कि घर से भागी क्यों तुम? तो जसबीर ने बताया कि मैं बड़ी रेबेलियस नेचर की हूँ और मेरे घर वाले मुझे कंट्रोल करना चाहते थे, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे जीने नहीं दे रहे थे, तो मैं माँ से लड़ी और माँ की सेफ से कुछ पैसे चुराकर यहाँ आ गई। तो इस तरह से देव साहब ने उस लड़की की कहानी उसी के मुंह से सारी सुन ली, और कहानी सुनते सुनते उन्होंने इस लड़की की कहानी पर फिल्म बनाने की भी सोच ली। मतलब कहानी सुनते सुनते देव साहब ने एक स्टोरी लाइन तैयार कर ली थी कि उनकी फिल्म अब ऐसी होगी। तो इस तरह इस कैरेक्टर को लेकर देव साहब ने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई जो सुपरहिट रही, और इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने जिनदमान को फिल्म में लिया। तो आइए फिलहाल तो देव साहब की फिल्मों के कुछ और नगमे सुन लेते हैं। आप रहेगा सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव के साथ।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
1: Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
3: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GG Mart, your personal grocer.
4: Some stories are easy to tell, par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jati hain. Ek choti si baat par parents se duri, ek pyar jo kabhi keh nahi paaye, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.

वेलकम बैक देवानंद स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। देव साहब ने सिंगापुर कई हीरोइनों के साथ काम किया और बेहद कमाल का काम किया, जिनमें उनकी फिल्में हिट रही, यानी फिल्में हिट रही तो जोड़ी भी हिट हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये रीत से हिंदी फिल्मों में कि अगर कोई एक जोड़ी 7-8 फिल्में एक साथ कर लेती है तो वो खुद को एक दूसरे के करीब समझने लगते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? मेरे ख्याल से सच में ऐसा होता होगा। जब आप ज्यादा टाइम किसी के साथ बिताते हैं तो भाई एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, ये लाजमी सी बात है। और कुछ ऐसा ही देव साहब के साथ भी हुआ। यानी पहले जीनत अमान की बात कर लेते हैं। जीनत अमान के साथ देवानंद ने कई फिल्में की और ये मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा है कि जीनत के साथ फिल्में करते करते वो जीनत को पसंद करने लग गए थे और फिल्म इश्क इश्क की शूटिंग के दौरान तो देव साहब को रियलाइज हो गया था कि वो जीनत से प्यार कर बैठे।

लूंगा। लेकिन फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत सोच रहे हैं, वो उनसे काफी छोटी हैं और उन्हें जीनत के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि देव साहब को किसी से मोहब्बत हुई नहीं थी इससे पहले, हुई है भाई, और कैसे भूला जा सकता है उस मोहब्बत को भाई। उस मोहब्बत के तो हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चे हो गए थे। देव साहब की पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं। उनको पहली बार मोहब्बत हुई थी फिल्म एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया से, और सुरैया भी देव साहब को उतनी ही मोहब्बत करती थी। इन दोनों की साथ में पहली फिल्म आई थी विद्या, जो 1948 में आई थी। इसके बाद कई सारी फिल्में इन्होंने की जो हिट भी रही, और इन्हीं फिल्मों से इनका प्यार परवान चढ़ता चला गया और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन सुरैया की दादी देव साहब को पसंद नहीं करती थी और इसीलिए इन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाई, और फिर पार्टीशन के बाद सुरैया भी पाकिस्तान चली गई।

0: फिलहाल अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिल्म 9-2-11 की शूटिंग का एक किस्सा आप तक पहुंचाएंगे। आप सुन रहेगा रेडियो मधुबन 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।
1: या जबरदस्ती करूं?
2: चाहता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव और शो चल रहा है देवानंद स्पेशल लेजेंड्स। फिर से ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जब लौटूंगा ब्रेक के बाद तो बताऊंगा देव साहब की फिल्म 9/2/11 की शूटिंग का एक किस्सा। बात है 1957 की। फिल्म 9/2/11 की शूटिंग थी जिसके निर्माता थे देवानंद और हीरो भी वो खुद ही थे और डायरेक्टर थे देव साहब के बड़े भाई चेतनानंद। एक्ट्रेस थी कल्पना कार्तिक जिनसे देव साहब ने बाद में शादी भी कर ली थी। इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली मुंबई हाईवे पर हो रही थी। इसी दौरान फिल्म के कुछ सीन मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूट होने थे तो ये सब वहां पहुंच गए। शिवपुरी इलाका उस समय डाकुओं का इलाका हुआ करता था, मतलब इस इलाके के आसपास काफी डाकू रहा करते थे। तो दिन की शूटिंग पूरी करने के बाद शूटिंग की पूरी यूनिट एक गेस्ट हाउस में ठहर गई। रात को देव साहब के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब ने सोचा कि इतनी रात को कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है, और उन्होंने डाकुओं के बारे में भी सुन रखा था तो थोड़ा डर उन्हें लगा। बहरहाल देव साहब उठे और बड़ी सावधानी से उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा एक आदमी खड़ा है, काले कपड़े और बड़ी लंबी मूंछ और साथ में बंदूक। देव साहब एक बार तो उसे देखकर डर गए। जी हाँ, वो डाकू था। लेकिन फिर उस डाकू ने कहा, हम ही हैं बगड़ सिंह। देव साहब इससे पहले कुछ बोलते उसने देव साहब की एक तस्वीर आगे बढ़ाते हुए कहा, इस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दो। सिंगापुर इस डाकू के जाने के बाद देव साहब की जान में जान आई। उन्हें लगा कहीं वो इन्हें किडनैप न कर ले जाए। तो सिंगापुर कुछ इस तरह के हालातों से भी गुजरना पड़ता है एक्टर्स को। लेकिन इससे भी ये पता चलता है कि कला की सब कद्र करते हैं, है ना। कला एक ऐसी चीज है जो सबको बांधे रखती है। तो इसी बात पर कुछ और गाने और उसके बाद आपसे आज की आखिरी मुलाकात करने के लिए समर लौटेगा यहीं पर।

0: आइए आइए सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव के लेजेंड्स, फिर से मैं आज की आखिरी मुलाकात के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं? इस मुलाकात को हम देव साहब की फिल्मों की कहानी से यादगार बनाएंगे। देवानंद एक ऐसा एक्टर जिस पर ब्लैक अचकन पहनने पर, ब्लैक कोट पहनने पर बैन लग गया था। क्या कभी आपने सोचा कि किसी पर इस तरह का बैन लग सकता है? सिंगापुर, आप जरा इस बात को सोचकर ही देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट उनका रहता था उस जमाने में लोगों पर। इम्पैक्ट तो आज भी, लेकिन कहते हैं कि उस जमाने में जब वो ब्लैक कोट या ब्लैक अचकन पहनकर निकलते थे तो लड़कियां चक्कर खाकर गिर पड़ती थी, छतों से कूद पड़ती थी, बैल्कनी से कूद जाती थी उनकी एक झलक पाने के लिए। देवानंद साहब हर फन मौला थे। उनका कहना था कि जिंदगी में प्यार ही सब कुछ है, रोमांस ही सब कुछ है।
1: बगैर रोमांस के आदमी भी जिंदा नहीं है। रोमांस देखिए आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में है, हर इंसान के है। आपके ध्यान में रोमांस है, और एक फूल के अंदर रोमांस है, किताब के अंदर रोमांस है, एक सेंटेंस के अंदर रोमांस है, दुनिया में कितनी खूबसूरत बातें हो रही है उसके अंदर रोमांस है।
0: वो हमेशा अपने आप को यंग मानते रहे और कहते रहे कि एज इज जस्ट नंबर। वो कहते थे कि दिल का जवान होना बेहद जरूरी है, अगर दिल जवान नहीं होगा तो इंसान तो बेहद जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उसका दिल जवान है तो वो दुनिया की हर खुशी को जी सकता है। देव साहब की फिल्मों की बात करें तो गाइड को कैसे भूल सकते हैं हम। ये फिल्म उन्होंने पहले अंग्रेजी में बनाई थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन फिर देव साहब ने यही फिल्म हिंदी में बनाई और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस फिल्म के चर्चे थे। वहीदा रहमान ने भी कमाल का काम किया था इस फिल्म में, और देव साहब का तो कहना ही क्या।
2: दोष मेरा था रोजी, मुनासिब तो यही था कि तुम्हें घर की लक्ष्मी बनाता, मगर जाने क्या धुन थी कि अपना बनाने से पहले तुम्हें दुनिया की रानी बना दूं। शोहरत तुम्हें मिली, सर मेरा घूम गया, देखा जेल में।
0: इस फिल्म के भी हर गाने सुपर हिट थे। एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक था और शैलेंद्र के बोल थे।
3: फिर

तो सिंगापुर ये शख्सियत बहुत बड़ी है और वक्त बहुत बेरहम बहुत कम। तो आज का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आज आपने सुना देव साहब के कुछ अनसुने किस्से। मैं फिर एक शख्स की एक शख्सियत की कहानी लेकर लौटूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से में। तब तक आप कीजिए कुछ वादे, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: रात अकेली है तो क्या हम

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में
2: रहो। रात अकेली है,
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
4: वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बीएमएनसीएम, बड़े मियां द खिलाड़ी एंड सीएम द बागी।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

ओ तैयब टेल मी हाउ तैयब टेल मी हाउ हो लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ

कुछ भी मिलते हैं, भेद बदल करते भक्तों का जो भगवान।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: आज सुबह सुबह मैं कैलेंडर देख रही थी और मुझे ऐसा लगा कि ये जो पिछले इतने महीने निकल गए हैं, ये कैसे निकल गए हैं। मतलब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि इतने मंथ्स में मैंने काम क्या किया है। मतलब अब आने वाले दिन टिल न्यू ईयर कितने कम बाकी हैं। सो इट्स अ हाई टाइम जब आप हर एक दिन को प्रॉपर यूटिलाइज करके टिल न्यू ईयर कुछ नया कर दे। Don't you think so? मुझे तो अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ ओनली ऑन मस्ती मॉर्निंग शो। एंड मैं ऐसा आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने जो एक्टर्स हैं वो भी तो सोच रहे होंगे ना कि उन्होंने इतने महीने कौन सी मूवी शूट करी और कौन सी रिलीज हुई या कौन सी रिलीज होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, बिकॉज इनके प्रोजेक्ट्स भी महीनों महीनों चलते हैं। सो डेफिनेटली उन प्रोजेक्ट्स का ध्यान रखते हुए और भी इनसाइट्स को जानते हुए रेडियो मस्ती पर मैं आज जेनिफर करेगी आपसे बहुत सारी बातें। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल मेरी जान। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: अच्छा ऐसा होता है ना कि जो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं फिर उनका कमबैक भी उतना अच्छा होता है लेकिन हर बार ये चीजें सही नहीं होती है। कई बार कोई गायब हो गया और उसके बाद हमने उसे ढूंढने की तलाशने की कोशिश करी तो हालात सही नहीं निकलते हैं। लेकिन ऐसा हमने कई बार सोचा जरूर है लेकिन आमिर खान जो है ना उन्होंने हमें गलत प्रूव किया है। वो अपना कमबैक करने के लिए आते ही हैं और फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो वापस चले जाते हैं और फिर दोबारा कुछ लेकर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। मतलब इन्होंने कभी हार नहीं मानी है। आप समझ गए मैं किस डायरेक्शन में बात कर रही हूँ। इस बार भी आमिर खान जो काफी वक्त से सन्नाटे में है इन्होंने सोच लिया है कि भाई कुछ करके दिखाना है अपना कमबैक तो लाकर ही दिखाना है। हाँ सो जो आमिर खान है बहुत जल्द एक लेजेंडरी क्रिकेटर लाला अमरनाथ जी जिन्होंने इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में 1952 के दौरान एक टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी उसमें शानदार परफॉर्मेंस दी थी तो उस दौरान क्या माहौल था क्या टेंशन थी और किस तरह से क्रिकेट उभर के आया था वो सारी चीजें उनकी कहानी जो है ना वो ये दिखाने वाले है। राइट आमिर खान अपने इस नए प्रोजेक्ट के साथ जिसका नाम होगा ललकारा उसके साथ कमबैक करने वाले हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च 2027 तक इसका शूट चलेगा और उसके बाद ये मूवी कब रिलीज होगी पता नहीं बट हाँ ये आमिर खान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। लेट्स सी कमबैक जैसा कमबैक होगा या फिर वही वाला कमबैक कि आ जाओ फिर वापस चले जाओ। हाँ रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।
3: We are Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: देखो खुद की मदद तो हम कर लेंगे लेकिन दूसरों की मदद पहले करनी चाहिए, राइट? एंड इसी थॉट के साथ आपको ये मौका मिल रहा है सिंगापुर में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आरजे रूपर आपके साथ, और हम सब इस बात को झुटला नहीं सकते कि रिसेंटली नेपाल में फ्लड आने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे पूरे घर और अपनों को खो दिया है, राइट? एंड ऑन दिस थॉट सिंगापुर जो है एक मदद का हाथ बढ़ा रहा है नेपाल की तरफ। डेफिनेटली सिंगापुर में टिल 3 अक्टूबर तक नेपाल फ्लड रिलीफ फंड जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें आप अपने तरीके से, अपने पॉकेट फ्रेंडली तरीके से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप डेफिनेटली मदद पहुंचा सकते हैं। टिल 3 अक्टूबर 10 AM to 8 PM के बीच पहुंचिए एंट्रेंस ऑफ लिटिल इंडिया आर्केड, 48 सिरानगुन रोड सिंगापुर। इंक्वायरी के लिए कॉल कीजिए 9166410 पर। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर। भाई आज की तारीख में अगर आपने मूवी नहीं देखी, कौन सी? धुरंधर। तो लोग आपसे कह रहे हैं क्या तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया यार, वो जो पेट्रियोटिज्म है ना, ओहो आपने मिस कर दिया। इन एक्टर्स का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है, रणवीर सिंह ने पहली बार एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पुराने गानों को एक नया दिशा दिया गया है, ये सारी चीजें तुमने मिस कर दी है, बिल्कुल मिस कर दिया। कुछ तो देखना चाहिए तुम्हें यार, बॉलीवुड इज बैक यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज पर आपको बताना चाहेगी डायरेक्टर मेघना गुलजार, जिनकी बहुत सारी मूवीज में रही हैं, राजी मूवी जिसमें आलिया भट्ट विकी कौशल भी रहे हैं, तो इस मूवी को लेकर मेघना ने बोल दिया है कि अगर आप राजी मूवी आज की तारीख में देखने बैठोगे ना, तो उसका हर एक कैरेक्टर आपको उतना ही पेट्रियोटिक लगेगा जितना कि आपको धुरंधर मूवी के एक्टर्स लगे हैं। तो उसको एक अलग दिशा में देखा गया, इसको एक अलग दिशा में देखा गया है। बात तो ठीक है यार, मतलब आलिया भट्ट भी शायद मुझे वंस इन अ वाइल ऐसी ही मूवीज की वजह से काफी ज्यादा पसंद भी आई थी, है ना? मतलब एकदम सिंगल हैंडली उन्होंने पूरी मूवी संभाल ली थी यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज पर आपकी बातें और गाने संभालते हुए कर रही है आपका इंतजार। डोंट गो एनीवेयर।